यादों की महफिल कार्यक्रम में चलते चलते राजा जानी फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, बोल आनंद बख्शी के, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

नमस्कार। मई की ये तपती हुई दोपहर शीतल छाँव में बदल जाएगी जब शुरू होगा एक सुरीला सफ़र जो कि बस शुरू ही हो गया है। आज है इस कार्यक्रम में आप मेरे यानी राजुल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सादर नमस्कार। सुरीला सफ़र कार्यक्रम में हम जो इबारत या टेक्स्ट या वाक्यांश पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, उसी में वो शब्द समाए होते हैं जिनमें जिन पर कोई गीत सुना जा सकता है, और वो गीत आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन से शब्दों पर गीत सुने जा सकते हैं। तो मैं बता दें कि आज भी बहुत सारे अंदाज़े लगाए गए हैं, और सच में हमारी और आपकी पसंद तो काफ़ी मिलती जुलती सी लग रही है। वैसे अगर आपका हमारी लिस्ट से मैच कर जाए गाना तो वाह वाह, और मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आपने जो बताया है हो सकता है वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर ही लिए जाएं। तो अब आज की इबारत हम आपको बताए दे रहे हैं उन सभी श्रोताओं के लिए भी जो फेसबुक पर नहीं देख पाए हैं। आज की इबारत है, जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं, मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, कभी किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। हाँ तो भाई, रोशनी को लेकर अपने अपने विचार, अपनी अपनी बातें आप सब ने रखी हैं, और बहुत सारे ऐसी भी संदेश हैं जिनमें जीवन से जुड़ी हुई बातें छिपी हुई हैं। क्या बात है, संदेशों तक हम आए तब तक एक सवाल पूछ लेते हैं कि रोशनी के लिए हमारे एक श्रोता ने कहा भी है कि शुरुआत हुई थी सूरज की रोशनी से, और उसके बाद बात सूरज की रोशनी की होते होते दिए की रोशनी पर पहुंच गई। सूरज का महत्व अलग है, वो प्रकाश ही नहीं देता, प्राणियों को ऊर्जा भी देता है, जीवन देता है। बिना सूरज के जीवन की कल्पना भी बेईमानी है। रही बात दिए की रोशनी की, तो सूरज के छिप जाने के बाद अंधेरे से लड़ने का प्रबल शस्त्र यदि है तो दिया ही है, जिसकी रोशनी में हम कुछ ताने बाने बुनते हैं और जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। वाकई दिया सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में जलता है, लेकिन रोशनी तो देता है, और बहुत सी बातें भी रोशनी देती हैं। तो दिया की बात चली है तो हमें ये बताइए कि क्या वो वक्त याद है जब, अभी तो हम बिजली का उपयोग करते हैं और बड़े धड़ल्ले से बत्ती जलाते हैं, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इन्वर्टर की भी बात कही है। वैसे जब इस बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त दिए के अलावा एक और चीज़ थी जो बहुत सारे घरों में जलती थी। अगर आपने वो देखा हो या उसका नाम याद आ रहा हो तो हमें ज़रूर बताएं। एक संदेश है,

धूप चढ़ती है, ये रोशनी आंखों को चुभने लगती है, खासकर गर्मी के दिनों में। अगर देखें तो जीवन और रोशनी में बहुत सारी समानताएं हैं, दोनों में ही चुनौती होती है। रोशनी के साथ जुड़ा है धूप छांव का खेल, रोशनी एक उपहार है, अगर ये ना हो तो जीवन कैसा हो जाए। और बाकी सब तो परीक्षा है, ये डर, ये मंजिल तक पहुंचने की सुगबुगाहट। रोशनी को जीवन से जोड़ने का हुनर सीखिए, कभी कभी ये रिश्तों को संजीवनी देने का भी काम करती हैं। क्या बात कही। तो अब कार्यक्रम का ये गाना बताइए, किनके स्वरों में ये गाना है?

0: सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम।
1: बहुत खूब जवाब आ गया। परिणय फिल्म का गाना, जयदेव का संगीत और शर्मा बंधु की आवाजें थी ये इस कार्यक्रम में। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, धूप ज़्यादा है, गर्मी बहुत है, मगर काम तो करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जैसे हमारे किसान हमारे लिए खेतों में अनाज उगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमें खाना मिले इसलिए किचन में हमारी माँ बहन बेटी और पत्नी इतनी गर्मी में खाना पकाती है। वाकई गर्मी तो बहुत है। अब सवाल के जवाब की बारी है। हमने पूछा था कि बिजली के आविष्कार के पहले दिए के अलावा कुछ चीज़ें और भी जलती थीं और कई चीज़ों के नाम हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता कह रहे हैं मिट्टी के तेल पर चलने वाला कंदील। एक साथी ने लिखा है डिबरी जलती थी, लालटेन की रोशनी एक साथी का जवाब है। और एक और श्रोता ने बताया कि लालटेन, और लालटेन के पहले थी चिमनी कांच की बोतल में थोड़ा सा घास लेट भरकर एक नाड़ी की बत्ती बनाकर जलाते थे। सुबह उठते थे तो उसका धुआं हमारी नाक पर जम जाता था, इसे ही शायद डिबरी कहते हैं, है ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जब बिजली नहीं थी तब विकल्प में लालटेन, पेट्रोमैक्स और मशाल से रोशन किया जाता था। भाई ये तो बात है ही है कि कई बार जब हमें वो पुरानी चीज़ें याद आती हैं, लालटेन जलाने में जो मशक्क़त करनी पड़ती थी, कई बार बत्ती चली जाने के बाद, जब बिजली चली जाती थी उसके बाद जब लालटेन जलाई जाती थी तो उसका भी एक अलग ही अनुभव होता था। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की गर्मी को शीतल चांद ही ठंडा कर सकता है। वैसे ही जीवन में ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में धन्यता मानते हैं, उन्हें शांत और संयमित रहकर शांत कर देना चाहिए। संदेशों की बात करें तो एक और संदेश है, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ धूप या रोशनी जीवन के अनुभवों और संघर्षों का भी प्रतीक है जो इंसान को निखारती है। रोशनी हमें स्पष्टता देती है, जैसे भौतिक रोशनी में हमें चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, वैसे ही ज्ञान की रोशनी हमें सही और गलत में अंतर करने और जीवन के सही फैसले लेने में समझ देती है। एक बड़ा सा संदेश है, काफ़ी सारगर्भित बातें लिखी हैं, हम समय की कमी के चलते थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे। ये अंधेरे और उजाले का क्रम अपने जीवन के सुख दुख के समान ही लगता है, उनके बीच भेद केवल सामयिक के साथ ही अनुभूति परक ही है। दूसरे महत्वपूर्ण भेद जो नज़र आते हैं वो ये है कि एक अंधेरे को दूर करने के लिए हमें दीपक जलाने जैसे प्रयास स्वयं करने पड़ते हैं, दूसरे में स्वस्थ प्रकृति से स्वस्थ ऋतु चक्र के चलते सामयिक षड ऋतुओं का चक्र सतत चलता रहता है। आगे लिखते हैं ये कि जब हम ही अपने अज्ञान परक अंधेरे को दूर करने के प्रयास की तरह ही पर्यावरण को प्रदूषित करते रहने का कार्य संपादित करते रहते हैं, फिर भीषण गर्मी जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सामना भी तो हमें ही करना पड़ेगा। भाई कृत्रिम दीपक जलाकर उजाले रूपी आनंद लेने के क्रम में भी तो हम ही हैं। अपने वैदिक संस्कृति में तो सायंकाल में ही शयन और उषा काल में ही चारपाई छोड़ देने का विधान है। आगे लिखते हैं कि हम अपने ही हितपोषक स्वस्थ प्रकृति को अस्वस्थ करते रहने के ही प्रयासों में ही हैं। ऐसे में स्वयं की अज्ञानता से जनित ग्लोबल वार्मिंग के दंश को झेलते रहने में गुरेज कैसा। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात के साथ साथ वो शब्द भी लिखे हैं जिनसे गाने हो सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की तरह तो सब चमकना चाहते हैं, पर उसकी तरह जलना किसी के बस की बात नहीं। सुबह सुबह निकलता सूरज किरणों को फैलाता है, जब किरणें धरती पर पड़ती सारा जग खिल जाता है, चिड़िया चहकती, कलियां महकती, फूल भी खिल जाता है, आसमान पे नीला बादल अपना रंग दिखाता है। तो चलिए ज़रा ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। और हाँ ये बताइए कि क्या लालटेन जलाई है आपने कभी?

बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम सही जवाब आया। हमराज फिल्म का ये गाना सुनील दत्त साहब का नाम भी लिखा है हमारे कुछ साथियों ने। महेंद्र कपूर की आवाज, साहिर के बोल, रवि का संगीत। और बात कर रहे हैं हमारे साथी कांच से निर्मित लैंप, जिस पर कांच का ही कवर होता था फ्लेम को हवा से बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त पेट्रोमैक्स लैंप भी चलते थे बचपन में हमारे घर में। एक और श्रोता ने कहा है, जब बिजली नहीं थी तब अंधेरी रात में लालटेन काम आता था। मैंने छुट्टियों में दूर गांव ननिहाल में लालटेन के उजाले में दिन गुजारे हैं। इसके अलावा पड़ती, समई, चिमड़ी, दिवटी, पलिता, मशाल, दीपमाल, मोमबत्ती, ये भी साधन प्रकाश देते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता बता रही हैं कि लालटेन और केरोसिन के पहले महुआ के फल से तेल निकालकर घरों में उसी को जलाया जाता था। और याद किया है एक श्रोता ने उस जमाने को, जब कोई शादी या ऐसे कोई प्रसंग होते थे तो पेट्रोमैक्स चलाकर रोशनी की जाती थी। शीशे वाले लैम्प की याद दिलाई है हमारे एक श्रोता ने। और एक और श्रोता बता रही हैं कि जी जलाई है और उसका शीशा भी साफ किया है। इन्होंने लालटेन की बात कही है। और कितने शीशे तोड़े और डांट खाई पापा की, फिल्म हमराज का नाम भी इन्होंने पहचान लिया। एक और श्रोता ने कहा है कि गांव में पोस्टिंग के दौरान नियमित शाम को बिजली कटौती होती थी, तब हम लालटेन ही चलाते थे। शाम होते ही उसे साफ करके तैयार कर लेते थे। और हमारे जो कविता लिखने वाले श्रोता हैं, उन्होंने एक लंबी सी कविता लिखी है, बहुत खूबसूरत कविता है, लेकिन उस कविता का थोड़ा सा अंश हम पढ़ रहे हैं। जलता रहा वो उम्र भर, मगर किसी ने ये ना पूछा कि जो सबको उजाला देता है उसके हिस्से में आखिर कितनी रातें आती हैं। नीले गगन ने जब कहा तुम अकेले नहीं हो रोशनी के रखवाले, तो सूरज हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान के पीछे सदियों की थकान छुपी थी। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं जलता हूँ तब किसी बच्चे की हंसी में चमक आती है, किसी माँ की दुआ में उजाला रहता है, किसी मुसाफिर को रास्ता मिलता है, किसी उदास चेहरे पर उम्मीद की किरण उतरती है, मगर मेरी किस्मत देख जिसे भी रोशनी मिली वो उसी का हो गया, कोई मेरा ना हुआ। इतना कहकर सूरज चुप हो गया। उसकी तपिश में अब दर्द पिघलने लगा था। आसमान भी खामोश था, क्योंकि पहली बार उसने देखा जो पूरी दुनिया को रोशन करता है उसके भीतर कितना गहरा अंधेरा था। दिल को छू लेने वाला संदेश, बहुत सुंदर। तो अब अगले गीत की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके पहले संदेश भी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मी ने तो अप्रैल में ही मई जून की याद दिला दी थी, सो अब भी गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। फिल्म जवाब का इन्होंने गीत याद किया है। और बहुत सारे गाने भी इन्होंने बताए हैं, सूरज को लेकर, नीले गगन को लेकर, और बहुत सारी गानों की बात की है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि रोशनी चाहे चांद की हो या सूरज की, दोनों का ही अपना अलग जादू और सुकून है। जहां सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा, गर्मी और नया दिन जीने की प्रेरणा देती है, वहीं चांद की रोशनी हमें शीतलता, सुकून और रात का ठहराव देती है। और सौर ऊर्जा की बात की है हमारे एक और साथी ने। लिखते हैं कि जगत भर की रोशनी के लिए सूरज जलते रहता है, और अब सौर ऊर्जा का ज़माना आया है, वो भी सूरज पर ही निर्भर है। अब हम बिजली का चालू रखने के लिए इन्वर्टर चलाते हैं, उसको रिचार्ज मेंटेन करना पड़ता है। चांद और सूरज हमारे रोशनी के नैसर्गिक साधन हैं। आज हमें अपना सुरीला सफ़र गीतों से रोशन करके पूरा करना है, और इन्होंने कई गीत याद किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। शब्द है माना जनाब। फिल्म का नाम बताइए और आवाज़ पहचानिए किनकी है।

0: सही जवाब आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन सभी श्रोताओं का। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़ है, और हम बता देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। एक श्रोता कह रहे हैं कि सोच लो अगर सूरज दादा ना होते तो पृथ्वी एक बेजान अंधेरी बर्फ का गोला बन जाती, ना पेड़ पौधे होते, ना हम होते, ना पशु पक्षी होते। शुक्र है सूर्य नारायण देव का कि जिनकी कृपा से आज पृथ्वीवासी हर जीव अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एक और श्रोता ने याद किया है, काइन फल निकलता था इसको मशीन में तेल पिराकर और घी के समान उसका तेल निकलता था, उसे भी घर में दिया बत्ती के रूप में जलाया जाता था। एक और श्रोता ने याद किया है हमराज फिल्म के गाने का की बात करते हुए कि मैं बिहार से हूँ और आज के ज़माने में बिहार में ऐसा समय आया जब 15 सालों तक हमारे गांव में 1989 से 2005 तक बिजली नहीं थी, तब लालटेन ही एक सहारा थी हमारे लिए, फिर मैंने सोलर लालटेन खरीदा। क्या बात है। एक साथी ने खुश होकर कहा है कि रोज़ रोज़ ध्यान लगाते हुए आज एक गाना मेरा लिस्ट में आया है, क्या बात है। और एक श्रोता कह रही है कि लालटेन के शीशे को उपले की राख से साफ़ करना पड़ता था, साफ़ करते समय बहुत एहतियात बरतना पड़ता था, ज़्यादातर घर के बड़े लोग ही से शाम को करके रख देते थे। एक और श्रोता ने याद किया है कि दुकान में शाम होते ही लालटेन जलाते थे और कांच को साफ करना पड़ता था, बाती मिट्टी का तेल चिमनी भी बेचते थे, आज ये सब बंद हो गए हैं बिकने। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से दिन निकलता है, चांद की रोशनी से रात का एहसास होता है, ज्ञान की रोशनी से जीवन संवरता है, वैसे ही अच्छे जीवन साथी से जीवन रोशनदान हो जाता है। क्या बात है। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुन लिया जाए।
1: आएगी जरूर।
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: सुहाने सुरीले सफ़र की बात जब हो रही है तो हमारी एक श्रोता ने याद किया है, हमें एक हल्की सी याद है कि गलियों और सड़कों पर लैंप पोस्ट हुआ करते थे जिसमें एक सरकारी आदमी आता था जो लैंप पोस्ट में तेल भरता था और जला देता था। रात भर लैंप पोस्ट जलता था, सुबह अपने आप बुझ जाता था, तब सूरज की रोशनी से काम चलता था। जी हाँ, वो भी एक ज़माना था। एक श्रोता कह रही है कि हमारी मम्मी दादी नानी ने लालटेन की रोशनी में कढ़ाई और सिलाई भी की।

हाँ वाकई, और बहुत सुंदर कशीदाकारी की है। अब सवाल जरा गौर से सुनिएगा, गाना पहचानना है आपको और फिल्म का नाम बताना है। कुछ इस तरह की लाइनें हैं कि चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आँख से दूर है आँख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। तो पहचानिए कौन सा गाना है ये और किस फिल्म का है। और हम जब संदेशों की बात करते हैं तो एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश दिख रहा है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों और शांति मन से है, जो अकेलेपन या बड़ी मुश्किलों के बावजूद मन को सुकून देती हैं। अकेले होने पर भी क्या छोटी सी बात से माँ को मन को सुकून दे जाते हैं। विशाल रोशनी की गर्मी में भी एक छोटी सी छांव मिल जाए तो वो मन को सुकून देती है। नीले गगन की विशालता में जब कोई एक चिड़िया चहकती है तो ये अकेलापन दूर कर देती है। जीवन की यही बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच किसी अपने का एक छोटा सा प्यार भरा शब्द या एक मुस्कान मन को शीतलता और राहत प्रदान करती हैं। यही जीवन है कि विपत्ति में भी छोटी छोटी सकारात्मक बातों को ढूंढ लिया जाए, जग ही नहीं मन भी रोशन हो जाए। क्या बात है। और अब अगला गाना जरा सुनिए और बताइए ये आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं। हंसने की बात है।

पारसमणि फिल्म का ये गीत आपने बताया और हमारे एक श्रोता ने कहा कि अगला गीत बचेगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और वो बच गया, क्या बात है। और जो हमने पहेली पूछी है, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि गीत तो कुछ कुछ याद आ रहा है मगर शब्द नहीं आ रहे। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहेली के इंद्रजाल ने उलझा दिया। ओहो हो, उलझिए मत, हम सुलझाए देते हैं। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगल विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। एक संदेश है, सूर्यदेव की महिमा निराली है, जब से धरती अस्तित्व में आई है सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है। दिन और रात होते हैं, वनस्पति को जीवन मिलता है, हमारे यहाँ प्रतिदिन सूर्यदेव को पूजा जाता है। सूरज और रोशनी की बातचीत की कल्पना अद्भुत है। एक और श्रोता ने कहा है कि जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब साल 1960 से मैं विविध भारती के शरण में आया, मेरे आकाशवाणी राम। बहुत सुंदर। जैसे जगत भर की रोशनी के लिए सूरज को जलते रहना ज़रूरी है, उसी तरह जगत भर के श्रोताओं के मनोरंजन के लिए विविध भारती का चलना ज़रूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो गीत की लाइनें एक बार फिर से बता देते हैं। गाना है, अंतरिक्ष की लाइनें हैं, चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। बताइए कि ये कौन सा गाना है और किस फिल्म का है। और अब ये अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये देखिए आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और फिल्म का नाम बताना है आपको। जहां शब्द से ये गाना,

0: कब आता है जहाँ जहाँ ख्याल जाता है वहाँ वहाँ तुम्हें कब आता है
1: ये कब हुआ ये क्यों हुआ ये क्या हुआ मुझे ये कब हुआ ये क्यों हुआ
2: तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उस पहेली की जो हमने गाने के रूप में पूछी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई पहले उसी का जवाब। आपने अभी जो पहेली पूछी गाने के शब्द याद नहीं आ रहे पर ऐसा लग रहा है कि फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ का गाना है, बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ इंसाफ कहाँ है, कुछ इस तरह की इन्होंने बात कही है। बिल्कुल सही बात है, अजब है मालिक तेरा जहाँ चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, ये है गाने की पहली लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। पारसमणि फिल्म के गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सही जवाब आया पारसमणि फिल्म की का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत रचना असद भोपाली की।

गीता रॉय और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने जो गाना सुना उसको सुनकर हमारे कुछ श्रोताओं को लगा कि हमने पहली बार सुना है ये गाना। ये गाना बड़े सरकार फिल्म का है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ तुरंत अपना संदेश भेजने के लिए। और अब अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच होता है या नहीं बताइए हमें, गाना मंजिल शब्द पर।

0: गजब कमाल, बड़ा ही दिलचस्प। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंजिल शब्द पर फिल्म संजोग से ये गाना आपकी लिस्ट से मिल गया, मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। एक श्रोता ने बताया है प्रदीप कुमार और अनीता गुहा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं, और एक और श्रोता कह रहे हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। एक साथी ने याद किया है, जहां तक मुझे याद है पुराने जमाने में शादी की बारात में लालटेन गैस बत्ती से उजाला किया जाता था और बारात ले जाई जाती थी, और गांव की पंचायत में भी गैस बत्ती का उपयोग किया जाता था। इसको पंच बत्ती कहा जाता था। इस दृश्य को राज कपूर की एक फिल्म में भी दिखाया गया था। कौन सी फिल्म थी वो, याद है आपको? शोले फिल्म में जया भादुड़ी को लालटेन जलाते और उसको धीमा करते हुए याद किया है एक श्रोता ने, और अंदाज़ा लगा रहे हैं एक और साथी कि ये जिंदगी के साथ ये अगला गाना बच सकता है। तो देखिए भाई कि ये गाना आपकी बात आपके लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं। हमें यह भी बताइए कि किसी की छोटी सी बात ने आपका जीवन क्या कभी बदला, या आपकी किसी छोटी सी बात ने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई और आपको याद रह गया।
1: छोटी सी ये दुनिया

किशोर कुमार, क्या बात है, पूरा जवाब। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने लगते हैं श्रोता जो विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़कर मिले हैं, हर रोज मिल रहे हैं। और एक और श्रोता ने कहा कि ये गीत मेरी लिस्ट में था। एक श्रोता ने अंधेरे की बात की है और अंधेरे को विसंगतियों और असमानता का प्रतीक बताया है। रोशनी के लिए सूरज एकमात्र पर्याय नहीं, भौतिकवादी संसार के संदर्भ में या फिर मनुष्य के अंतर्मन में गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, सच्ची भक्ति और आंतरिक प्रेम ही एक दिव्य रोशनी है जो अंतर्मन में व्याप्त अंधेरे को दूर कर मार्ग प्रशस्त करती है। सृजन और कला के माध्यम से भी रोशनी प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए कि सृजन और कला या आपकी किसी छोटी सी बात से किसके जीवन में रोशनी आई या किसी ने आपके जीवन में इस तरह से रोशनी भर दी, एक पल के लिए लगा जैसे उजाला ही उजाला हो गया, याद हो तो बताएं। और अब ये गाना सुनिए और हमें ये बताएं कि फिल्म में फिल्म का नाम क्या है और प्रमुख कलाकार कौन है।

हमारी जो बात थी कि क्या किसी ने आपके चेहरे पर मुस्कान सजाई या आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई है, छोटी सी रोशनी अदा की है उसे, इसके जवाब में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मैंने अपने सहयोगी को कार्यक्षेत्र में कहा था, तुम टूर पे जाते हो, क्या करते, कोई नहीं देखता, सिर्फ दो व्यक्ति तुम्हारा काम देखते हैं, एक ऊपर वाला, एक स्वयं तुम, अतः खुद से पूछो। उसे बात लग गई और वो सुधर गया। क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से कई बातों का समाधान हो जाता है, कई बार बात बिगड़ भी जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बनेगी या बिगड़ेगी ये तो बिल्कुल दूसरे के कई बार मूड पर भी डिपेंड करता है। और ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या वो गाना, क्या वो बात दूसरे को भली लगने वाली है या नहीं। एक श्रोता ने किशोर दा कहा है कि किशोर दा ने ये गाना एकदम हेमंत कुमार जी के अंदाज में गाया है, कभी कभी तो धोखा भी हो जाता है कि किसकी आवाज़ है, छोटी सी दुनिया की बात कर रही हैं ये। हाँ भाई, छोटी सी दुनिया है, आवाज़ें भी मिल जाती हैं, अंदाज भी मिल जाते हैं। और एक और श्रोता ने गुस्सा जताया है कि 60 और 70 के दशक के गानों में ही सिमट कर रह गया है कार्यक्रम। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम और गाने भी शामिल करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात हो रही थी, जिस तरह के विषयों की बात हो रही थी, जिस तरह के शब्दों की बात हो रही थी, तो जो गाने अच्छे लगे और जो गाने हिट रहे, ज़्यादा सुने गए, उन्हें ही हमने छांटा है। तीसरी कसम फिल्म और हरियाली और रास्ता में लालटेन दिखाई गई है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात हो रही थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे की, लेकिन उसके पहले हम सोचते हैं कि ये गाना जल्दी से सुन लिया जाए। हम आपको बताते हैं इसका जवाब भी। ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम पहचानिए, आवाज़ें पहचानिए किनकी है।

कई संदेश आए हैं लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाज़ों में। बड़ी बहन फिल्म का ये गाना आपने सुना था, सही जवाब। एक श्रोता ने कहा है कि हमें एक बूढ़े माली की मुस्कान याद आ गई। हमारे घर के सामने छोटा सा पार्क बना हुआ है पानी की टंकी के चारों तरफ, और उसमें इतनी गर्मी में रोज़ एक बूढ़ा माली छतरी लगा करके घास काटते हैं। हम एक गिलास नींबू पानी देने गए तो इतनी गर्मी में मानो उन्हें तड़क मिल गई। उनकी मुस्कान से हमें जो खुशी मिली नहीं बता सकते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता ने बताया है किशोर कुमार और कुमकुम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के प्रमुख कलाकार। और एक और श्रोता ने कहा है कि पत्नी धर्मपत्नी के आगमन से 1975 में मेरी किस्मत बदल गई। उसके पहले शून्य में था, वो आई तो आगे एक लग गया यानी 10 बन गया। ये पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई ना? बिल्कुल आ गई। और मुस्कान के साथ साथ वक्त की ये घंटी भी आ गई कि अब आपसे इजाज़त देनी है। तो सुरीला सफ़र कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। फिर मिलेंगे। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है गंगा दशहरा का पावन पर्व। ये दिन माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए हिमालय में कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर गंगा जी धरती पर आने को तैयार हुईं। जब गंगा धरती पर उतरी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि उसको संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इसीलिए इस दिन शिव जी की पूजा भी की जाती है और माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान और पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा न केवल एक पवित्र नदी है बल्कि इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। शांति और अच्छाई की प्रतीक गंगा नदी के बहते पानी में हजारों दीपक प्रवाहित किए जाते हैं। देश के कई प्रदेशों में बड़ी धूमधाम से गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी में ये एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है।

ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की भी पवित्र नदियों में से एक कहलाती है। गंगा के निर्मल और पावन जल पर समय समय पर बहुत सारे शोध भी किए गए हैं और विज्ञान की हर कसौटी पर गंगा का जल भी खरा उतरा है। विज्ञान भी मानता है कि गंगा जल में कीटाणुओं को मारने की क्षमता है। इसका जल हमेशा ही पवित्र रहता है। लेकिन जिस प्रकार आजकल ना सिर्फ गंगा नदी बल्कि अन्य बहुत सारी नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है, इसे रोकने की ज़रूरत है। हमें समझने की आवश्यकता है कि गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि जीवनकाल और लोक संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। गंगा सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ साथ विकास की जननी भी।

दोस्तों, भारत को नदियों का देश माना जाता है। भारत में सिर्फ गंगा को ही नहीं बल्कि अन्य नदियों को भी माता के रूप में पूजा जाता है। ये सदा से ही हमारे लिए जीवनदायिनी रही है। नदियाँ धरती पर जीवन के लिए एक आशीर्वाद हैं। हमें अपने जीवन में गंगा नदी की बहती धारा से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार वो अपने गंतव्य की ओर पहुंचने के लिए बहुत सारी रुकावटें आने के बाद भी निरंतर आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही रहना है। हम गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन उसे माँ मानने का हमारा व्यवहार सिर्फ उसकी पूजा मात्र तक ही सीमित है। असल व्यवहार में हमने गंगा को कचरा और मल ढोने वाली मालगाड़ी मान लिया है। इसके कारण गंगा का जल प्रदूषित होता है, वो अपना संतुलन भी खोती है। वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या है। हम अपने दैनिक जीवन में जल को दूषित करेंगे, जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा मन भी अशांत होगा और हमारा जीवन भी अशांत होगा। इसीलिए गंगा को प्रदूषण से बचाकर हम अपने मन को भी प्रसन्न और स्वस्थ रख सकते हैं। गंगा की सफाई और स्वच्छता में भी हम अपना सहयोग कर सकते हैं। हमें गंगा के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर उसे संवारना होगा और उसे प्राथमिकता देनी होगी, ताकि गंगा का दोहन बंद हो सके और सही मायने में यही माँ गंगा की सच्ची सेवा और उपासना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2,00,000 से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी ही नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा।
3: Yeah.
0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में

0: भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
4: If you heard me earlier,
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
5: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से दो दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयू

0: सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा, पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गाना मन्ना डे के स्वर में आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला कालजयी गीत स्कूल मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ें हैं, प्रदीप के बोल हैं और वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की रेशमी आवाज़ों में प्यार बरसाता ये कालजयी गीत आपने सुना स्कूल मास्टर फिल्म से। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाई भाई फिल्म से है। लता मंगेशकर की आवाज़ है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की तर्ज़।

0: बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जिद्दी का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, शुरू में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

बोलो कुछ तो बोलो बोलो बोलो बोलो।

0: तब से नगमे मोहब्बत के गा रहा हूँ।
1: चाचा जिंदाबाद, इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का गाना। शैलेंद्र के बोलों को संगीत से सवारा है शंकर जय किशन ने।

ये महकती किलकती शिकायत आरजू फिल्म से हसरत जयपुरी की लिखे हुए इस गीत में आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी नगमा बंदिनी फिल्म की से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत रचा है सचिन देव बर्मन ने।

0: सदाबहार नखमे कार्यक्रम आज बस यहीं तक, दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहे गीत,
2: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आपके मनचाहे गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म दाग के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनांद गांव से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दाग का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है। सुनना चाहते हैं? रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

फासलों की खुशबुओं में महकती नज़दीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में।

नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, इस गाने को सुनना चाहते हैं। जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

ये थिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवालाल फिल्म से सुना। और अब अगला मनचाहा गीत, बड़ी प्यारी सी पसंद चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोक झोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ, सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

0: दिल के सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहेगी
2: यह है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: इस हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज, ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज।
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को।
2: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन,
1: इस पर दया कीजिए।
0: अरे, ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी,

0: हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
1: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
2: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
1: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है, लीजिए मैंने अपना बाण लौटा लिया।
2: पुरु वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
1: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
1: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन, मेरा नाम शारंग्रव है।
2: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
1: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
2: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहां पधारकर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
1: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर?
2: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
1: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला?
2: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
1: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है।
2: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
1: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी समिधा लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
2: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों फड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं। क्या रूप, क्या सौंदर्य है! आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं। वन लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
2: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
3: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
4: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
2: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे, समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
4: लताएं भी रूठती हैं क्या?
2: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूठती भी है और प्रसन्न भी होती है, समझी?
3: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
2: क्या समझी है तू?
3: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
2: वो कैसे?
3: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से।
2: अरे अनुसुईया, ओह, जरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांधी है इस प्रियंवदा ने।
3: ए, मुझे क्यों दोष दे रही है?
2: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
3: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
0: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
2: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूं?
3: तेरे मुंह से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
2: परिहास ना कर।
3: अच्छा नहीं करती, बता।
2: देख, वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी पड़ी हो गई, नहीं?
3: तेरी तरह।
2: फिर परिहास।
3: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
2: हाँ बता।
3: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
2: धत, तेरा तो सिर घूम गया है।
3: सच, मैंने अपने कानों से सुना है।
2: अच्छा,
3: पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
4: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
2: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
5: ओह, अरे ये भौरा कहां से आ गया?
4: अरे
5: ओह, अरे भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। अरे अरे, मेरा पीछा छोड़, भाग, अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
3: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
4: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
3: हाँ, वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
5: अरे बचाओ, बचाओ ना।
0: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए।
6: पृथ्वी पर पुरुवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
3: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
4: आपके आते ही भाग भी गया।
3: आप खड़े क्यों हैं आर्य? विराजी ना।
4: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
6: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
3: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य,
4: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
6: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठे ना आप लोग भी।
5: ना, तुम लोग बैठो, मैं भी।
3: अब बैठ भी जा।
5: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
3: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
4: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
6: मैं क्या बताऊं इन्हें, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूं। पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूं।
3: आज यदि पिता कण्व यहां होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
6: और ही ढंग से?
4: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला,
5: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
6: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
3: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
4: बहुत मीठा है इसका गला,
3: करती रहती है सबका भला,
4: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
3: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है।
4: कुलपति कण्व की सबसे लाडली बिटिया है।
6: किंतु कुलपति कण्व तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
3: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य, वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
6: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
4: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डोलता हुआ दिखाई देने लगा।
6: फिर
4: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया मेनका के उस मादक रूप को देखकर।
6: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
3: किंतु क्या आर्य?
6: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
3: यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य, पिता कण्व तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
5: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
3: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
4: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
6: वृक्षों को सींचने का ऋण?
3: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
4: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
6: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
3: आप
6: ये लीजिए।
3: अंगूठी? किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
4: आपके पास ये अंगूठी?
6: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
3: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
4: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
6: मैं आभारी हूँ।
7: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं, सावधान सावधान।
6: ओह, लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आए हैं।
4: हे भगवान, अब क्या होगा?
7: सावधान, वन के जीव जंतुओं के कान के रूप में एक उच्चृंखल हाथी भी उत्पात मचाता आ रहा है। सावधान सावधान।
4: चलो चलो चलो, उस
8: रहा था कि यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
4: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
6: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
4: चलो शकुंतला।
2: चलो
6: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं, किंतु किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा। शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तन से ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो। प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो। भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना। गधा, घोड़ा, बैल, मक्खी, मच्छर, कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है। शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है। अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो, नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है! आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे? अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है।
0: भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज?
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: हैं? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
0: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
0: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेश क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
0: विशेष बात?
1: हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
0: अप्सरा की कोख से और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव्य।
2: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
4: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन।
4: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहाँ नहीं है।
5: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आर्य।
4: अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
1: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक,
2: आज्ञा महाराज।
1: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहां ले आए।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूं।
4: आर्य की जय हो।
2: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
1: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
2: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
1: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: माता का संदेश?
6: महाराज की जय हो।
1: क्या आदेश है माता का?
6: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
1: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव्य।
4: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
1: एक काम हो सकता है माधव्य।
0: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
1: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
0: मैं तुम्हारे स्थान पर?
1: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
4: ठीक है,
7: महाराज दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
1: और हाँ, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ, यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
0: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
1: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
0: कहिए महाराज।
1: यही कि मैं यहाँ तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूँ, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
0: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा?
1: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
0: जो आज्ञा महाराज।
1: जाओ युवराज।

0: आह, कितनी प्यारी पवन चल रही है। अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या कह रही हो अनसुया?
2: प्रियंवता, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से
2: तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवता, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
0: इसी से पूछकर देखें?
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवता, किंतु उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो। इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
1: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं, तभी से
2: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
1: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
0: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
2: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
1: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
0: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
2: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
0: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
2: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
0: वो कैसे?
2: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
0: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
2: मुझे एक उपाय सूझा है।
0: क्या?
2: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं।
0: फिर
2: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
0: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
2: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
1: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
0: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
1: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
0: क्या शकुंतला,
1: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
0: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
2: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
1: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारतीय सुनने वालों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
1: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
2: जरूर,
1: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशंस आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो मंचीय प्रस्तुति?
2: अन्ना जी के सिवा और वसंत देसाई के सिवाय।
1: अच्छा,
2: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं गाया मैंने।
1: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
2: अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
1: जी जी,
2: उनका नाम था। तो हम शो करते थे षण्मुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग। तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के। यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया। तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ, तो आपके गले में नहीं आई, तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना, ऐसे गाओ, चलेगा। अन्ना जी नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
1: अन्ना जी मतलब श्री रामचंद्र
2: जी। तो षण्मुखानंद में शो था और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पे ये करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाइश दे रहे थे।
1: अच्छा।
2: तो थोड़ी देर एनर्जाइजेशन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे

0: तो शर्मुखान में शो था
1: हाँ
0: और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन कोई लोग खास तौर पे ये करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे।
1: अच्छा
0: तो थोड़ी देर एनर्जाइजेशन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे

0: समझे, जो उनको
1: अच्छा
0: चाहिए चाहिए बस,
1: जी,
0: बट ये दोनों में फर्क था बसंत जी और
1: हाँ
0: अन्ना जी
1: जी
0: में।
1: जी अन्ना जी को, यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम
0: जी
1: याद करें,
0: जी
1: तो इतनी सारी कंपोजिशन्स है,
0: बहुत
1: उसमें से
0: बहुत
1: कौन सा कंपोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थी
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ, तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये हाँ। तो समझ में आता है
1: हाँ।
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: वो दुर्भाग्य रहा मेरा नहीं हुआ। लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, वसंत जी का म्यूजिक था
0: जी,
1: और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई, दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा।
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: तो
1: मैं बहुत ये दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका एसएल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ।
0: हाँ।
1: हमारा तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया, लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने मुझे ये कहा था जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का।
0: अच्छा।
1: और कुछ करने का नहीं, बोला अच्छा आपके हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा अच्छा। आशा जी की बात निकली है तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफ कोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
0: प्राण जाए पर वचन जाए, वो नैयर साहब का,
1: नैयर साहब का,
0: क्या बात क्या बात।
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी।
0: हाँ।
1: लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत,
0: ये गाना सुन लिया।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए,
0: हाँ हाँ,
1: और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अम्बा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ
0: जी,
1: पुराना
0: जी,
1: कोई फिल्म का,
0: हाँ,
1: और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा,
1: हाँ, दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ,
1: तो लोग एकदम ऐसे, अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा कभी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा, अच्छा,
1: अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे, हाँ, और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
0: जी, बिल्कुल,
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उनके,
0: हाँ,
1: मुकाबले,
0: हाँ,
1: में तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ,
0: ओ,
1: कि ये गाना इनका,
0: अच्छा,
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था,
0: हाँ,
1: मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो, हाँ, मुझे, हाँ, मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला अम्बा, वो गाइए, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं, वो मेरी है, तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से कोई कोई गाना इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहाँ के लोकल लोग बहुत खुश होते थे,
0: अच्छा,
1: उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना,
0: हाँ,
1: तो मस्त उनको मजा आता था सुनने में।
0: क्या बात,
1: उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं आपको,
0: हाँ,
1: बताया,
0: हाँ, बिल्कुल,
1: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था मेरे पीछे,
0: हाँ,
1: बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता,
0: अच्छा,
1: था,
0: अच्छा,
1: बहुत बड़ा कटआउट बनाया था,
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, पत्रे का बनाया था
0: जी, जी, जी,
1: मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दातार और सुनहरी यादें, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था, तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है,
0: हाँ,
1: मंदसौर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे,
0: अच्छा,
1: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
0: घूम रहा,
1: ऐसा,
0: अच्छा,
1: लगता,
0: अच्छा,
1: था,
0: अच्छा,
1: तो ऐसा भास होता था लोगों को, तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ,
0: हाँ,
1: मेरी मेरी तो जहाँ तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की, तो बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ
0: अच्छा,
1: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था,
0: हाँ,
1: कि
0: बिल्कुल
1: उसको रिकॉर्ड जैसा लगा
0: क्या बात, क्या
1: लेकिन
0: बात,
1: मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया,
0: जी,
1: मैंने
0: जी,
1: उसको
0: जी,
1: बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया
0: हाँ,
1: कि
0: हाँ,
1: ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने,
0: हाँ,
1: ऐसा गाना गा, फिर वो शांत हो गया
0: क्या बात,
1: आदमी
0: क्या बात, श्रोताओं की बात निकली है
1: जी,
0: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में शोज
1: हाँ
0: किए
1: जी
0: हैं और विदेशों में भी किए हैं,
1: जी
0: हर शहर का श्रोता अलग होता है,
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं लेकिन
0: हाँ
1: अनुभव से
0: हाँ
1: आपको मालूम होना चाहिए
0: हाँ
1: कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं,
0: जी जी
1: एक साथ लघु पाठ पांच छह शांत धीमे गीत, फिर लोग हाँ करके सामने सामने ये करते हैं,
0: अच्छा अच्छा
1: फिर दो गाने के बाद ये रात को डा सफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप हाँ समझना चाहिए, वो सिखा
0: अच्छा
1: के नहीं आती बात,
0: अच्छा अच्छा
1: और जहाँ तक पहली बार भी गए
0: हाँ
1: किसी शहर में किसी
0: हाँ
1: गांव में छोटे से गांव में भी,
0: जी जी
1: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को,
0: ओहो,
1: किस प्रकार के गाने चाहिए,
0: अच्छा,
1: तो वो होने से ज़्यादा अच्छा होता
0: हाँ,
1: था
0: और
1: समझ,
0: भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है?
1: फर्क नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे, ये
0: अच्छा,
1: है अच्छा
0: हाँ
1: लोग
0: हाँ
1: पसंद,
0: हाँ
1: क्योंकि ये रफ़ी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे,
0: पसंद आता
1: पहला
0: है,
1: प्रमिला
0: जी
1: भी
0: जी
1: अच्छे गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब
0: जी
1: पूछते
0: जी
1: थे फिर आके,
0: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज़्यादा होती थी?
1: और रफ़ी साहब का गाना एक डुगाना है,
0: हाँ हाँ
1: 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था,
0: ओहो,
1: हाँ, और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे,
0: जी जी
1: तो वो
0: जी
1: आगे आके उनको उसको एक बोलते ना, मैं बताती हूँ आपको,
0: हाँ हाँ
1: रफी साहब पहले शुरू करते थे,
0: जी

0: फिर जानी इसकी अरे परसों भी रहेगा अरे तरसों क्या जानी भाई आप इतना के पूना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते
1: जी जी जी तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर।

0: विमला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक।
0: अच्छा ना।
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और हाँ, स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है,
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी, जी,
1: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना,
0: हाँ,
1: ये होता है, ये ठपका दोष आता है
0: जी, जी।
1: इसलिए वो अगर होता था, लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी, मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे दाद मिलती थी लोगों की, तो मैं खुश थी, वही उसमें ही खुश थी और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा चला और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि ऐसा होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा। एक पूना

0: आपका शो खानदानी लगता है,
1: हाँ
0: तो बस वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी है,
1: क्या बात है,
0: दूसरा कोई कहने की जरूरत ही नहीं है।
1: शो में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो,
0: शालीनता हो
1: तो जरूर सवाल ही नहीं,
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: बहुत सुंदर होता है, क्या बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग हैं और वो शो के लिए आपके आए हैं?
0: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी हाँ। ज्यादा नाम मुझे याद नहीं है।
1: प्राइवेट शोज भी होते थे,
0: प्राइवेट शोज भी होते थे
1: कंपनी के लिए,
0: होते थे कंपनी के लिए किसी हाँ, हाँ। कंपनी के लिए बहुत शो हुए,
1: अच्छा
0: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियल मुंबई के आसपास और बाहर गांव में भी
1: जी, जी।
0: बहुत सारी कंपनी उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे, नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट किया।
1: जी जी, प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए हैं,
0: हाँ,
1: सबका अपना अलग अंदाज होता
0: हाँ,
1: है, अपना स्टाइल होता है, ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया, सबका गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और उनकी
0: सही बात
1: विशेषता होती है, फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी, शमशाद बेगम जी के प्रस्तुत, वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, किन कंपोजिशंस में ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
0: हाँ, यही मैं कहने वाली थी
1: जी,
0: कि पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे
1: जी,
0: वो चैलेंजिंग थे।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: अच्छा।
0: अभी आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है,
1: अच्छा
0: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है, लेकिन पुराने जो गाने थे उसमें अगर जो म्यूजिक भी था बीच का, वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा
1: जी,
0: इस तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है, ऐसा चिल्लाते थे जरा भी। मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ, मेरा अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है, उन्होंने शुरुआत करियर की मेरे शो से की थी,
1: अच्छा।
0: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचेरे गाने
1: जी, जी।
0: तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और उसमें सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है,
1: अच्छा
0: हाँ, तो नंदूरवार करके गांव है छोटा सा धुलिया के पास
1: जी।
0: तो वहाँ पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया। मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको क्लासिकल का ज्ञान था, तो नहीं वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया, वो तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो, तो लेकिन रफी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए है मुकरी, तो उतना भी उसको मालूम पड़ा, म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए
1: तो श्रोताओं को समझ में आ जाता है,
0: बराबर उनको ए करके चिल्ला देते वहां से।
1: क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार सुना है, तो
0: उनके दिमाग में
1: वैसा वो सुनना चाहते हैं।
0: अभी ये गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है टर टर टर, वो आना ही चाहिए ऊपर, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना, इतना म्यूजिक चिपक के चलता था शब्दों को
1: जी। ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं
0: जी,
1: उनकी नज़र से एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है,
0: मिलता नहीं है, सही बात,
1: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना
0: बजा करके
1: अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
0: एक तो रिहर्सल,
1: हाँ,
0: बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से। इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है, अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20-25 शो हुआ करते थे, वही, और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए, नहीं तो आज ये ढोलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का, तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था,
1: हाँ,
0: सालों साल तक
1: जी।
0: अभी मैंने 2023 को एक शो किया,
1: हाँ,
0: बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू, तो शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज, हाँ, 4 साल से,
1: हाँ, हाँ,
0: तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें, तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को,
1: अच्छा,
0: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी मेरे लिए,

0: म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूँगी, लेकिन काल के हिसाब से एकदम से तो बदली हो जाएगा नाजी जैसे। तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का, उसमें एक रिहर्सल और शो
1: जी,
0: बस दूसरी रिहर्सल नहीं। हाँ, एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो
1: बात।
0: जी तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी दो तीन थे म्यूजिशियंस, एक संजय मराठे करके है
1: जी।
0: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
1: जी।
0: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है, तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है।
1: अच्छा।
0: तो ज़्यादा रिहर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ी।
1: हाँ।
0: लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता जाता तो उसके लिए तो ज़रूरत होती थी ना रिहर्सल।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो एक रिहर्सल और शो
1: जी,
0: लेकिन
1: जी।
0: फिर भी लोगों ने पसंद किया उसको जी, शो जी। को।
1: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मानके बोलूंगी, विनय मानके,
1: विनय मानके,
0: विनय मानके
1: जी जी मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मानके जी की आवाज हम सुनते हैं
0: जी, जी
1: तो
0: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे। हाँ, बहुत सारे जिंगल गाए उसने। और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज परफॉर्म होता है वो था, बहुत सारे हल्के फुल्के बातें भी करने का बीच में मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे नॉट डेट, तो उसमें कोरस था तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के।
1: अच्छा।
0: तो ये कुछ कुछ कुछ कुछ बीच में अशोक जी इतने एक दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा। फिर मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा आया।
1: बहुत अच्छे।
0: फिर एक गाना था अन्ना जी का, भोली सूरत दिल के खोटे, नए जमाने की नारी, नए जमाने की नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली, तो ये बोला ऐसा हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली, कुछ भी मतलब वो ठीक था, लोगों को भी मजा आता,
1: मस्ती के मूड में
0: मस्ती के
1: हमेशा रहते थे।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे,
1: जी, जी।
0: लेकिन विनय जो अकेला संभालता शो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना था उसका। बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब
1: जी,
0: था।
1: जी, जी।
0: अच्छा गाना।
1: प्रमिला जी, अब गाना सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं। कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल,
1: जी जी,
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए पड़वा के शो में, वसंत दादा पाटिल, शंकर राव चौहान और जो कुछ, विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए। वो बड़ा शो हुआ करता था और तो मैं किसी को बुलाती थी, या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी, हाँ। प्रभु कुंज में, तो उसी सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली सामने दर्शन हुआ साक्षात। तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके, आपने कैसे आना किया, कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा,
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे, लेकिन वो भार्गव जाने वाली थी,
1: अच्छा,
0: नहीं
1: अच्छा।
0: आई। फिर मुझे उन्होंने पूछते हैं कि कसे भाव तुम्हें अच्छे प्रोग्राम करता है, एवडे प्रवास कराएगा, पर गायला उभ रहा कस करता है, मतलब नहीं अभी आदत हो गई है, हो जाता है मतलब उसने, उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा मालूम
1: था उनको क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके गाए हैं।
0: हाँ जी।
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
0: उनका एक सजा फिल्म का गीत है,
1: हाँ
0: वो मैं शायद

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियाँ आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी है, पाड़ा ला पिकला आंबा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में शामिल होना बहुत ही जरूरी था।
1: मस्ट।
0: और भी एक तो पहले हम उसकी झलक सुनेंगे
1: जरूर,
0: और फिर लावणी की भी बात करेंगे।

0: O paună, paună, paună, zaratamba, o paună, zaratamba, arăghe, parala piclai amba, alavai, parala piclai am, honitvag, parala piclai amba. कुछ अलग अलग वैरायटी होती हाँ, थी हाँ, पर हाँ, फिर ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी, जी,
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन, तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पाड़ाल पिकला मैं बोलूंगी अम्बा आप बोलेंगे
1: अच्छा।
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर अरे क्या कर रहे हो आप, अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से, फिर जोर से एकदम जो जोर लगा के अम्बा आता था सामने से, मजा आता था। उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया,
1: वाह वाह वाह,
0: उनको भी शायद आता था
1: जी। प्रमिला जी, आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी, तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ का कोई गाना आप उन्हें जरूर
0: हाँ
1: सुनाया करती
0: थी हाँ।
1: और अपनी लिस्ट में
0: कन्नड़ा गाना सुनाती हूँ
1: जी जी जरूर,
0: मेरी लड़की बैठे ना मतलब खुश हो जाएंगे।

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि भाई क्या,
1: अरे बाप रे, गुजराती तो वो एक गाना था।
0: हाँ हाँ।

0: हिराना बहुत उधर ज्यादा। और उधर गुजरात के एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे। हाँ। तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहाँ जब सब काठियावाड़ी ने वो झबला पहनते हैं, हाँ, हाँ, शॉर्ट, हाँ, हाँ। वो पहन वाला बैठे थे तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाँव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाँव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए, ए प्रेमिला बहन नव पिक्चर में गाने गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने
1: जी.
0: उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर, इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उस पर। तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ बोलना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल। 1975 में जो शुरुआत हुई उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फेहरिस्त बनाई,
0: हाँ
1: होगी, लिस्ट,
0: हाँ,
1: बनाई होगी,
0: हाँ जी,
1: है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: और तब की जो उस प्रोग्राम, उस शो की जो लिस्ट थी,
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें।
1: अच्छा?
0: जो लोग पसंद करते थे।
1: अच्छा,
0: हमारे लिए नहीं।
1: हाँ।
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर,
1: हाँ,
0: उधर,
1: हाँ, हाँ।
0: लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरी पसंद के या लोगों की पसंद के,
1: हाँ,
0: पहले से थे।
1: अच्छा,
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों के लिए, लेकिन एक एक अवारी जो मैंने बोली, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, फिर पाड़ाला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की,
1: हाँ,
0: वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी।
1: अच्छा।
0: उनके गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं, वही गाने चाहिए लोगों को।
1: वाह वाह वाह,
0: बहुत मजा आता था।
1: बहुत मजा आ रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन
0: हाँ
1: करके।
0: जी, हाँ जी,
1: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए तो वो कौन सा गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, ऊपर वाले का ये करम है कि आज आप यहाँ पधारी,
1: मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिस तरह आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये मिंढारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चीनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनकपुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवा खाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 19 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, मुड़ापारा, सुखरी भंडार, सरगा, ढोढ़ा गांव, बोड़ाझरिया, घासीडी, घड़गांव, बैगहवा, बरडाण, कंडराजा, चोरकी, पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, कुकुर गांव, कुदराझरिया, साजा पानी, तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारुमा, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 136 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, औरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कलमी टिकरा, गिरारी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का। अब से थोड़ी देर बाद 5:10 पर आप सुनेंगे वनिता विहार कार्यक्रम। वनिता विहार कार्यक्रम में आपस की बात के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अनेक रोगों का कारक उच्च रक्तचाप, साथ ही सुनेंगे क्रम सखियों की पसंद। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 6:20 पर और शाम 7:00। शाम 7:20 का वक्त होगा किसान भाइयों के कार्यक्रम किसान वाणी का। किसान वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आज की बात का विषय है कृषि में बढ़ती ड्रोन की उपयोगिता। आज की नसीहत में सुनिएगा, पंजीकृत दुकानों से ही खाद व बीज खरीदें। साथ ही आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत का वक्त होगा रात्रि 8:20 का। रात्रि 8:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। विविध संगीत हम पेश करेंगे रात्रि 10:00 और 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। श्रोताओं, ये था कार्यक्रम विवरण हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का।
3: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र।

तिहत्तर मुड़ा रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।

एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: पॉप टाइम कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए विवा का गाया गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

पॉप टाइम कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अब्बास टायर वाला का लिखा गीत आसमा की आवाज में। लीजिए अब सुनिए वीवा का गाया गीत, रचना है जावेद अख्तर की।

विवा के गायस गीत के साथ ही पॉप टाइम कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वनिता विहार।

कार्यक्रम है वनिता विहार, जिसे लेकर आई हूँ मैं आपकी अपनी सखी रश्मि पटेल। मेरी ओर से सभी को प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम सब कम समय में अधिक से अधिक काम करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, इसलिए आज सबके जीवन में एक भागदौड़ सी मची रहती है। कभी हम बिना नाश्ता किए ही घर से निकल जाते हैं और भूख लगने पर बाहर से ही कुछ खरीद कर खा लेते हैं, या फिर कभी कभी तो बिना कुछ खाए ही लंबे समय तक रह जाते हैं। यानी हमारी दिनचर्या में ज़्यादातर कामों का हमने कोई समय ही फिक्स नहीं किया है, क्योंकि काम को लेकर हम अक्सर जल्दबाजी में रहते हैं और न ही हमने पूरे दिन का टाइम टेबल बनाया है और न ही टाइम मैनेजमेंट किया है। यानी ज़िंदगी की रफ्तार में अक्सर हम अपने दिल की आवाज़ सुनना भूल जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो धीरे धीरे शरीर में प्रवेश करती है। शुरुआत में शरीर में कोई दर्द नहीं होता, लेकिन समय के साथ कई गंभीर बीमारियों का कारण बन जाती है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हमारा दिल दिन रात बिना रुके काम करता है, ये खून को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है, लेकिन जब खून का दबाव हमारी रक्त नलिकाओं पर सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं उच्च रक्तचाप, यानी हाई ब्लड प्रेशर। सामान्य तौर पर 120/80 रक्तचाप को सामान्य माना जाता है, लेकिन जब ये लगातार इससे ऊपर रहने लगे

ये खतरे की घंटी हो सकती है। मैंने ये साइलेंट किलर इसलिए कहलाता है क्योंकि ये चुपचाप और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाता रहता है। लगातार बढ़ा हुआ रक्तचाप दिल पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ये दिमाग की नसों को प्रभावित कर स्ट्रोक का कारण बन सकता है। इसमें किडनी भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, आँखों की रोशनी पर असर पड़ सकता है और कई बार व्यक्ति को थकान, चक्कर, घबराहट और सांस लेने में तकलीफ भी होने लगती है। मैनो, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ रहा है। पहले इससे लोग उम्रदराज लोगों की बीमारी मानते थे, लेकिन अब युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। कारण है ज़रूरत से ज़्यादा नमक का उपयोग, फास्ट फूड और तैलीय भोजन, तनाव, चिंता, घंटों मोबाइल की स्क्रीन पर समय बिताना, व्यायाम और नींद की कमी, मोटापा और शुगर। मैंने उच्च रक्तचाप कई बार बिना लक्षण के भी शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए नियमित जांच ज़रूरी है। उसके होने के कारण और लक्षण को जानने के बाद ज़रूरी है कि हम उससे बचाव के उपाय को भी जानें। कुछ आसान सी आदतें हमारी अपनी ज़िंदगी बदल सकती है। उन आदतों के बारे में जानेंगे इस गीत के बाद, जिसे सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है अमलेश्वर से श्रीमती सुमन ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने। और ये सुनना चाहते हैं फिल्म आशिकी 2 का ये प्यारा सा गीत।

पलक मुछल और अरिजीत सिंह के गाए हुए इस गीत को लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीतबद्ध किया था जीत गांगुली ने। और गीत के पहले बहनों हम बात कर रहे थे उच्च रक्तचाप से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कौन कौन सी आदतों में बदलाव ला करके हम उससे बच सकते हैं। तो भोजन में नमक की मात्रा को कम करके, अपने वजन को नियंत्रित करके, भरपूर नींद लेकर, अपने तनाव को कम करके, नियमित योग और व्यायाम, कम से कम आधे घंटे नियमित चलना और ताजे फल हरी सब्जियों का सेवन, ये सब कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको अपनाकर उच्च रक्तचाप रूपी साइलेंट किलर को हम अपने से दूर रख सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से अपना बीपी चेक करवाते रहें, डॉक्टर ने जो दवा दी है तो उसे समय पर लें और अपनी मर्जी से कभी भी बंद न करें। मैनो, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि दिल स्वस्थ रहेगा तो जीवन भी खुशहाल रहेगा। कल यानी 17 मई को है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, जिसकी शुरुआत वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग WHL द्वारा पहली बार 14 मई 2005 को की गई। इसके बाद से हर साल 17 मई को ये दिवस मनाया जाने लगा ताकि लोगों को उच्च रक्तचाप के प्रति जागरूक किया जा सके, समय पर इसकी पहचान की जा सके और इसकी रोकथाम व इस पर नियंत्रण किया जा सके। तो बहनों, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए और सुनते रहिए हमारे साथ अपनी पसंद का गीत। इसलिए उठा लेते हैं हम अपना अगला पत्र, जिसे लिखा है बनियापारा धमतरी से श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा, कविता, छुटकी एवं पूरा माखीजा परिवार। और बोर दादर शिवकानंद कॉलोनी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से अमरदीप सिंह, गगनदीप सिंह, कुलदीप सिंह, दिलराज कौर, हेम कौर, जयवंती कौर, धन्नो, गगन पाजी, जैकी ने। और ये सुनना चाहते हैं मैं हूं ना फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: स्पॉट के पहले बहनों हमने जो गीत सुना उसे गाया था अनु मलिक, KK, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान ने। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। और बहनों अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो गर्मी के मौसम में शरीर को स्वस्थ और ठंडा रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो हमें डिहाइड्रेशन, लू और थकान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो गर्मी में अपनी देखभाल करने के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ आसान तरीके। गर्मी के दिनों में भरपूर पानी पीना चाहिए। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। बाहर निकलते समय भी पानी की बोतल अपनी साथ ज़रूर रखें। हो सके तो नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और ORS का घोल भी लेते रहें। गर्मियों में ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाना कम पचता है, इसलिए इन्हें अवॉइड करें और हल्का और पौष्टिक भोजन लें। अभी मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी जैसे पानी वाले फल ज़रूर खाएं। बाहर का खाना खाने की बजाय घर का ताज़ा भोजन बेहतर होता है। दोपहर में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप बहुत तेज़ रहती है, इसलिए इस समय बाहर निकलने से बचें। अगर किसी कारण से बाहर निकलना ही पड़ जाता है तो बाहर जाते समय छाता, टोपी या सूती कपड़ा अपने सिर पर बांधकर निकलें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें। शरीर को ठंडा रखने के लिए दिन में 1 से 2 बार स्नान करें। कमरे को हवादार रखें। ज़्यादा देर तक बंद या गर्म जगह में रहने से बचें। और बहनों, इन दिनों लू की समस्या हो सकती है तो उसके लक्षणों को पहचान कर तुरंत उसका इलाज करें, जैसे कि चक्कर आना, तेज सिर दर्द, बहुत ज़्यादा पसीना या शरीर गर्म होना, कमजोरी और उल्टी। ये सारी परेशानियां लू लगने पर हो सकती हैं। और ऐसे मौसम में अभी बच्चों और बुज़ुर्गों का ध्यान विशेष रूप से देने की ज़रूरत है। उन्हें समय समय पर पानी पिलाते रहें, धूप में ज़्यादा देर न रहने दें। तो आप इस गर्मी अपनी देखभाल ज़रूर करें, इन सारे उपायों को अपनाकर। और इसके साथ वक्त हो चला है एक और पत्र उठाने का, जिसे लिखा है हमें मोतीम बाई मानिकपुरी, धनवंतीन बाई, योगिता बाई मानिकपुरी, गणेश धाम परसुली से, डोंडी लहरा बालोद छत्तीसगढ़ से। और ये सुनना चाहते हैं फिल्म होगी प्यार की जीत का ये प्यारा सा गीत।

जसविंदर नरूला और रूप कुमार राठौड़ के गाए हुए इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिन ने। और इसके बाद बहनों हम उठा लेते हैं अपना एक और पत्र, जिसे लिखा है क्योटा पारा रायगढ़ से मालती निषाद, पार्वती निषाद, अनमोल निषाद, मीनू निषाद ने। श्री झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से लक्ष्मण वाधवानी, विमला वाधवानी, प्रेम राजेश, बेबी कविता, मास्टर हर्ष और खुशी वाधवानी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से करुणा वर्मा, प्रियंका बंछोर ने। और ये सुनना चाहते हैं फिल्म दीवाना का ये प्यारा सा गीत।

इसी के साथ बहनों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हमें पत्र ज़रूर लिखिए। पत्र व्यवहार का हमारा पता है, कार्यक्रम वनिता विहार द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी रायगढ़। पिन है 496001। अब अनुमति दीजिए अपनी सखी रश्मि को। नमस्कार, शुभ संध्या।

वनिता विहार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आपको हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से थोड़ी देर बाद 6:20 पर और शाम 7 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। किसान भाई कार्यक्रम किसानवाणी सुनेंगे शाम 7:20 पर। किसानवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय है कृषि में बढ़ती ड्रोन की उपयोगिता। आज की नसीहत में सुनिएगा, पंजीकृत दुकानों से ही खाद व बीज खरीदें। साथ ही आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनाएंगे रात 8:20 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। विविध संगीत हम पेश करेंगे रात्रि 10 और 10:30 का वक्त होगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी का। ये थे हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।
3: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी श्रोता रायगढ़@gmail.com।

0: आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। वित्त विभाग हा शासकीय खर्चा में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन निश्चित करे के उद्देश्य ले निर्देश जारी करे है। केंद्रीय गृह मंत्री काली ले 3 दिन के दौरा में छत्तीसगढ़ आवत हैं। ये दौरान उमनहा मध्य क्षेत्रीय परिषद के 26वां बैठका के अध्यक्षता करहीं। और प्रदेश के जनजातीय गांव मन में अवैया 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाही। अब समाचार विस्तार ले। वित्त विभाग हा शासकीय खर्चा में अमित व्ययता और वित्तीय अनुशासन निश्चित करे के उद्देश्य ले निर्देश जारी करे है। एकर अनुसार सबो विभाग संभागीय आयुक्त कलेक्टर और विभागाध्यक्ष मनला सरकारी संसाधन के बने उपयोग और गैर जरूरी खर्चा ऊपर नियंत्रण राखे बर कहे गए है। वित्त विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव डहार ले जारी ये निर्देश ला तत्काल प्रभाव ले लागू कर देंगे है। ये निर्देश अवैया 30 सितंबर तक प्रभावी रही। निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद निगम मंडल और आयोग के पदाधिकारी मन हा अपन काफिला मा सिर्फ जरूरी गाड़ी मन के ही उपयोग कर सकी। एकर अलावा सबो सरकारी गाड़ी मन ला इलेक्ट्रिक गाड़ी मा बदले के निर्देश दे गए है। पेट्रोल और डीजल में होवैया खर्चा ला कमती करे बर और एक एक दिशा में जाने वाला अधिकारी मन बर वाहन पुलिंग व्यवस्था लागू करे बर कहे गए है। उन्हें जरूरी काम के अलावा राज्य सरकार के खर्चा में शासकीय सेवक मन के विदेश यात्रा ऊपर पूरा रोक लगे रही। जरूरी होए मा मुख्यमंत्री के मंजूरी लेबर पड़ी वर्चुअल और ऑनलाइन बैठका ला ज्यादा बढ़ावा दे जाही। उन्हें शासकीय भवन में ऊर्जा की बर्बादी ला रोके बर जरूरी उपाय करे जाही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काली ले 19 मई तक छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरा में आवत हैं। ये दौरान उमनहा 19 मई के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद के 26वां बैठका के अध्यक्षता करहीं। बैठका में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संघरा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होही। बैठका के तैयारी के बारे में मुख्यमंत्री श्री साय काली मंत्रालय में उच्च स्तरीय और समीक्षा बैठका करें और अधिकारी मन ले जरूरी निर्देश दें। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरा के बारे में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा हां पत्रकार मन ला बताएं कि डायल 112 आपातकालीन सेवा के विस्तार करे जावत थे। एकर तहत केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह 18 मई के रायपुर में 400 नवा गाड़ी के शुरुआत करी। ये दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजला एक नवा फॉरेंसिक लैब और जांच भर 33 सर्व सुविधा युक्त वाहन के सौगात घलो देही। श्री शर्मा बताएं कि बस्तर के नेतानार सुरक्षा केंद्र हा पहली ऐसन जगह है जिला जन सुविधा केंद्र के रूप में बदले जावत थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपन बस्तर प्रवास के दौरान ये केंद्र के उद्घाटन करहीं। ये केंद्र में अस्पताल, स्कूल, बैंक और आंगनबाड़ी जैसन जरूरी सुविधा दे जाही। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा आज जगदलपुर में कार्यक्रम स्थल में जाके तैयारी के जायजा लेन और अधिकारी मंडला जरूरी निर्देश दीन। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा जिला के कोसला गांव पहुंची नौ चौपाल लगाईन। ये दौरान उमनहा लोगन ले सीधे चर्चा करीन और सरकार के आने आने योजना में हुए काम के जानकारी लीन। उमनहा ग्रामीण मन के समस्या सुनी नौ अधिकारी मनला उखर निपटारा करे के निर्देश दीन। ये मौका में मुख्यमंत्री हा कहिन कि सुशासन तिहार के उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना और योजना मन के फायदा आखिरी मनखे तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री आज कोरबा जिला के लेमरू गांव घलो पहुंची नौ प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही उनके नवा बने आवास के उद्घाटन करीन। ये दौरान उमनहा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हितग्राही मनला अंशदान के राशि के चेक घलो दिन। राज्य सरकार ह ग्रामीण महिला मन ला ऊर्जा के क्षेत्र में सशक्त बनाए बर बछर 2026 ले 2031 तक के अवधि बर द्वीपती योजना ला मंजूरी दे दे हैं। ए योजना के तहत गांव मन में सोलर दीदी तैयार करे जाही जौन मन ला सौर ऊर्जा के प्रणाली के स्थापना संचालन और रख रखाव के प्रशिक्षण दे जाही। ए माइलोगिन मन ह सोलर मिल कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई जैसन ऊर्जा सुविधा के संचालन करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मैं आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
3: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
2: और अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। प्रदेश के जनजातीय गांव तक सरकारी योजना के फायदा पहुंचाए बर अवैया 18 ले 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाए जाही। ये अभियान प्रदेश के 8,000 ले ज्यादा गांव मन में चलही। आदिम जाति विकास विभाग के ये अभियान मां प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ले जुड़े गांव मन ला शामिल करेगी है। रायपुर जिला ला छोड़ के प्रदेश के सबो जिला में स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक सुरक्षा पोषण और पेयजल योजना के फायदा पात्र लोगन तक पहुंचाए जाही। अधिकारी मन हां गांव-गांव जाके जन सुनवाई करही और आदि सेवा केंद्र में मामला के निपटारा होही। ये दौरान सिकल सेल और टीबी जांच बर स्वास्थ्य शिविर घलो लगाए जाही। IPS अधिकारी अरुण देव गौतम ला छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक बनाए गए है। गृह विभाग के प्रमुख सचिव निहारिका सिन्हा ये संबंध में आदेश जारी कर दिन है। राज्य सरकार है करीब 1.5 साल पहले ओमनला प्रभारी DGP के जिम्मेदारी दे रही। IPS अरुण देव गौतम ला संयुक्त राष्ट्र पदक के अलावा सराहनीय सेवा बर भारतीय पुलिस पदक और विशिष्ट सेवा बर राष्ट्रपति पुलिस पदक ले सम्मानित करे जा चुके हैं। उमन हां छत्तीसगढ़ कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी हावे। राज्य शासन दहारले स्पष्ट करेगे है कि प्रदेश में ईंधन के पर्याप्त स्टॉक हवे और पेट्रोल डीजल के वितरण में सरकार दहारले सतर्क निगरानी राखे जावत है। यही बीच रायपुर कलेक्टर हा पेट्रोल के ब्लैक मार्केटिंग ला रोके बर एठन हेल्पलाइन नंबर जारी करे हैं। उन्हें सक्ती जिला में कलेक्टर हा पेट्रोल डीजल के बिक्री के बारे में सख्त आदेश जारी करे हैं। अब पेट्रोल और डीजल के बिक्री सिर्फ संबंधित वाहन में ही करे जाही। कलेक्टर के आदेश ला नहीं माने मा पेट्रोल पंप संचालक मन ऊपर कार्रवाई करे के चेतावनी देगी हवे। रायपुर में सफाई व्यवस्था देखैया कंपनी के कर्मचारी मन के आंदोलन आज तीसरा दिन घलो जारी रहिस। हड़ताली कर्मचारी मन हा आज दलदल सिवनी में उग्र प्रदर्शन करिन। ये दौरान पुलिस के जवान और हड़ताली कर्मचारी मन के बीच झूमा झटकी घलो होइस। कंपनी के आरोप है कि नगर निगम डहारले करीब 78 करोड़ रुपया के भुगतान नहीं करेगे है। ये हड़ताल में कचरा गाड़ी चलैया चालक मन घलो शामिल हैं जौन मन हा वेतन बढ़ाए के और सही बेरा में भुगतान करे के मांग ला लेके प्रदर्शन करत हैं। ये कर्मचारी मन के हड़ताल में जाएले शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के व्यवस्था में घलो बाधा पड़े है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर डहरले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संझा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। ए बखत के अंक में खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला के संबंध में जानकारी दे जाही। अब पेश है मौसम के हाल। प्रदेश में तेज गर्मी के संगे संग आंधी और हल्का वर्षा के दौर शुरू हो गए है। मौसम विभाग के अनुसार अवैया कुछ एक दिन तक प्रदेश में धूप और छांव के स्थिति रही है। अवैया 24 घंटा के दौरान एक दो जगह में हल्का वर्षा होए के या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। उन्हें कुछ एक जगह में अंधड़ चले के और आकाशीय बिजली गिरे के आसार है। यही बीच मानसून आज अंडमान सागर निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्वी बंगाल के खाड़ी में प्रवेश कर चुके हैं। एकर 26 मई तक केरल पहुंचे के उम्मीद है। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घाव फिर। वित्त विभाग हा शासकीय खर्चा मा मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन निश्चित करे के उद्देश्य ले निर्देश जारी करे है। केंद्रीय गृह मंत्री काली ले 3 दिन के दौरा मा छत्तीसगढ़ आवत है। ये दौरान उमनहा मध्य क्षेत्रीय परिषद के 26वां बैठका के अध्यक्षता करही और प्रदेश के जनजातीय गांव मन मा अवैया 18 ले 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
0: आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सबसे पहले सुने उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया गीत। गीतकार हैं समीर, संगीत अनु मलिक का है। फिल्म का नाम मुझसे शादी करोगी।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका 2 स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अनिल

0: और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। राम प्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में, तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था, कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूरे देश में, इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुने, सुनिधि चौहान की आवाज में। गीतकार इरशाद कामिल, संगीत संदेश शांडिल्य का है। फिल्म का नाम चमेली।

मैं हूं ना। इस फिल्म में अभी आपने सुना जावेद अख्तर का गीत, अनु मलिक का संगीत था। फिल्म मैं हूं ना के लिए ये आवाज़ें थीं सोनू निगम, आफताब साबरी और साथियों की। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी रायपुर है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
5: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य शासन ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर लगा प्रतिबंध। मंत्रियों के काफिलों की गाड़ियों में की जाएगी कमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 3 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं।

0: जगदलपुर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के साथ ही अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रदेश के जनजाति गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा और राजधानी रायपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सफाई व्यवस्था हुई प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। वित्त विभाग ने शासकीय खर्चों में मितव्ययता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों तथा विभाग अध्यक्षों को सरकारी संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव द्वारा जारी इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ये निर्देश आगामी 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे। निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, निगम, मंडल और आयोगों के पदाधिकारी के काफिले में केवल जरूरी वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा सभी सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वाहन पूलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर राज्य शासन के खर्च पर शासकीय सेवकों की विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक होने पर मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। भौतिक बैठकों के स्थान पर वर्चुअल और ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं शासकीय भवनों में ऊर्जा की बर्बादी रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 19 मई तक छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे 19 मई को बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री साय ने कल मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि डायल 112 आपातकालीन सेवा का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत केंद्रीय मंत्री श्री शाह 18 मई को रायपुर में 400 नए वाहनों का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राज्य को एक नई फॉरेंसिक लैब और जांच के लिए 33 सर्व सुविधा युक्त वाहनों की सौगात भी देंगे।
1: 112 की सुविधा थी वो अब तक 16 जिलों में लागू थी और इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाना था। वो पूरे प्रदेश में 18 की सुबह प्रारंभ हो जाएगा। 400 गाड़ियां पूरे प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पहुंचेंगी। हमारे ही पुलिस लाइन से इसको माननीय अमित शाह जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ कर दिया जाएगा।
0: श्री शर्मा ने बताया कि बस्तर का नेतानार सुरक्षा केंद्र पहला ऐसा सुरक्षा शिविर होगा जिसे जन सुविधा केंद्र के रूप में बदला जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने बस्तर प्रवास के दौरान इस केंद्र का उद्घाटन करेंगे।
1: हमारे जो सुरक्षा के कैंप हैं, उन कैंपों को अब सुविधा के केंद्रों में बदल दिया जाए। नेतानार वो पहला स्थान है जहां केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर के सुरक्षा के कैंप को सुविधा के केंद्र में बदलने जा रहे हैं। हमारे सुरक्षा के कैंप जितने हैं वो सारे सुरक्षा के कैंप आने वाले समय में पंचायत के भवन, स्कूल के भवन, आंगनबाड़ी के भवन, चिकित्सालय हो सकते हैं।
0: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह के बस्तर प्रवास को लेकर आज जगदलपुर में कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। ईंधन की वितरण व्यवस्था पर प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है। इस बीच रायपुर कलेक्टर ने पेट्रोल की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं सक्ती जिले में कलेक्टर ने डिब्बा और बोतलों में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा जिले के कोसला गांव पहुंचे और चौपाल लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोसला गांव के महतारी सदन और हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
2: सुशासन तिहार का उद्देश्य यही है कि पूरी सरकार लोगों के बीच में जा रही है। हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्लस्टर बनाकर इस तरह से समाधान शिविर का भी आयोजन हो रहा है और उसमें जनता की जो समस्याएं हैं उसको आवेदन पत्र के रूप में ले रहे हैं और जो भी तत्काल में समाधान हो सकता है तत्काल समाधान कर रहे हैं। बाकी को एक महीना के अंदर में समाधान करेंगे और इससे बहुत लाभ भी हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री आज कोरबा जिले के लेमरू गांव भी पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही के नव निर्मित आवास का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हितग्राहियों को अंशदान की राशि का चेक भी प्रदान किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आगामी 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान प्रदेश के 8,000 से अधिक गांवों में संचालित होगा। आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांवों को शामिल किया गया है। रायपुर जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक सुरक्षा पोषण और पेयजल योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अधिकारी गांवों में जन सुनवाई करेंगे और आदि सेवा केंद्रों में शिकायतों का निराकरण होगा। इस दौरान सिकल सेल और टीबी जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए द्वीप्ति योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी तैयार की जाएंगी, जिन्हें सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये महिलाएं सोलर मिल कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई जैसी ऊर्जा सुविधाओं का संचालन करेंगी। योजना में क्लस्टर लेवल फेडरेशन को महिला ऊर्जा सहकारी समितियों के रूप में विकसित किया जाएगा। महासमुंद और बस्तर के कुछ समूह पहले ही विक्रेता के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया है। रायपुर में सफाई व्यवस्था संभाल रही कंपनी के कर्मचारियों का आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। हड़ताली कर्मचारियों ने आज दलदल सीवनी में उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के जवानों और हड़ताली कर्मचारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई। कंपनी का आरोप है कि नगर निगम द्वारा करीब 78 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। इस हड़ताल में कचरा गाड़ी चलाने वाले चालक भी शामिल हैं, जो वेतन बढ़ाने और समय पर भुगतान करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था बाधित हुई है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले की विशेष अदालत ने वाड्रफ नगर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी को रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये फैसला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सुनाया गया है। आरोपी को एंटी करप्शन ब्यूरो की अंबिकापुर शाखा ने 12,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने के आसार हैं। इस बीच मानसून आज अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुका है। इसके 26 मई तक केरल पहुंचने की उम्मीद है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमन डेका ने कबीरधाम प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में आम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से अधिक पौधरोपण करने और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने करीब 1.5 साल पहले उन्हें प्रभारी डीजीपी की जिम्मेदारी दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए रमेश कुमार डटसेना और सूरजपुर जिले की शिवनंदनपुर नगर पंचायत के लिए रितेश जायसवाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और राजनांदगांव जिले के माड़ीतराई गांव में प्रशासन ने छापामार कार्रवाई कर करीब 2,300 बोरी खाद जब्त किया है। अधिकारियों ने खाद गोदाम को सील कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य शासन ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर लगा प्रतिबंध। मंत्रियों के काफिलों की गाड़ियों में की जाएगी कमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 3 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। जगदलपुर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के साथ ही अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रदेश के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा। और राजधानी रायपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सफाई व्यवस्था हुई प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
3: FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। आइए सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: फिल्म मस्ती में अभी आप सुन रहे थे आनंद राज आनंद को, गीतकार थे समीर।
1: आकाशवाणी @90।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सर्वप्रथम आकाशवाणी को अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे करने पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आकाशवाणी ने वर्षों से देश के कोने कोने तक समाचार, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे समाचार हो, विविध भारती, हवा महल और युववाणी जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों ने न केवल लोगों का मनोरंजन किया बल्कि उन्हें जागरूक भी बनाया है। गांव हो या शहर, हर वर्ग के लोगों तक आकाशवाणी की आवाज़ पहुँची है और उन्हें एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। मैं हृदय से आकाशवाणी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिसने हमेशा विश्वसनीय और सच्ची जानकारी हम तक पहुंचाई। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी आकाशवाणी के इस गौरवशाली सफर को नमन करते हैं और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।
3: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
6: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
7: देश की सुरीली धड़कन
8: विविध भारती,
6: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
7: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
6: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
7: वीर सैनिकों की जय माला
6: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
7: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
9: सखी सहेली,
7: बॉम्बे टॉकीज और
10: सेल्यूलॉइड के सितारे,
7: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
11: मुझे याद सब है जरा जरा,
6: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
7: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
6: मन का सुकून, दिल की आरती,
7: सुरीली संदली।
12: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
12: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
12: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
7: देश की सुरीली धड़कन
8: विविध भारती,
6: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
7: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
6: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
7: वीर सैनिकों की जय माला
6: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
7: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
9: सखी सहेली,
7: बॉम्बे टॉकीज और
10: सेल्यूलॉइड के सितारे,
7: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
11: मुझे याद सब है जरा जरा,
6: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
7: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
6: मन का सुकून, दिल की आरती,
7: सुरीली संदली।
13: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
13: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
13: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
14: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

फिल्म इश्क है तुमसे का। आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीतकार समीर और संगीत हिमेश रेशमिया का।

इश्क है तुमसे। इस फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है।

किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनया जम्मो संगी दाई बहनी मल्ला वेणुधर पटेल के जय जोहर संगवारी हो और संगवारी हो बैठकी पहुँच गए कह और बैठकी में आप मन संग चर्चा करबो आप मल्ला भी अवगरा रखते हमारे संगवारी मन का विषय लेके आई है कहके असंगवारी हो हम बहुत दिन के बाद भी भेंट करथन अभी जो चर्चा में देख समसामयिक में जाबो तो जोन हिसाब ले घाम करत है संगवारी हो ऐसा लगत है कि ऐसो के घाम हर बहुत ही ज़्यादा लगत है और बीच में जो पानी गिरीस लेकिन इमें कहे जाए तो दो प्रकार के बात हो जाते हैं। मैं पानी गिरे ले घलो कुछ फायदा आई सी में कहा का पर देखा बहुत संगवारी एक क्षेत्र विशेष का देखो तो पानी आप समझना पड़िया मन वाला क्षेत्र विशेष में गिरी से निगिरी से तो एक क्षेत्र वाला देखें तो आकरस जोतई ला कर लेते हैं है ना ट्रैक्टर वैक्टर लगा के तो एक बहुत अच्छा बात है कि बीच में जो पानी गिरे रहीस तो बहुत अच्छा लगीस कि अकरस जोतई होती यार खरीफ फसल की यार अच्छा ढंग ली तैयारी कहा जाही माने मौसम भी साथ दिए थे कहना चाहिए तो ऐसा बात है तेकरे में जाकर भी सुविधा आ है अब बतर मिला थे संगवारी हो है ना पानी के बतर है वो दिन जो गिरे रहीस कहो तो ओकर फायदा ले सका था देख ला खेत ला थोड़े निगरानी में जाके देख लवा वाला है ना कि ओहर बतर हावे कि नहीं है कहके और उसरा के अगर जोत पा था तो बहुत अच्छा हुई काबर देखा इमें अकरस जोता ले बहुत ही फायदा हावे इमें कहा जाए तो बंद कचरा तो मरते कहा कीड़ा मकड़ा के जो घर द्वार बना रहे थे वह नष्ट हो जाते है ना आगे चल के रोग व्याधि नहीं हुई कहा तो बंद कचरा हर भी नष्ट हो जाती कहो तो जरूर कर सकत हुई लगवा के जोतई बुतई काम लगा कहा असंगवारी बैठकी में अपन संग जो भी आओ विषय रहे थे हमन लेके आए हैं कहा जेमा हमारे संगवारी मन संग भेंट कर रथन ऐसे संगवारी हैं ग्राम पत्रापाली पूर्व के विकास खंड रायगढ़ के रवैया पशुपालक हैं कृष्णचंद निशाल ले दुग्ध उत्पादन से आत्मनिर्भरता के विषय में गोठियार हैं नौकर चर्चा ला सुनबो और संग में संगवारी हो कृषि में बढ़ती ड्रोन की उपयोगिता और नसीहत में है पंजीकृत दुकान ले ही खाद और जो भी बीज बर्था खरीदन वाला खरीदे के काम हवे आज के टिप में है कृषि अवशेष और कचरा ले मूल्यवान जो कंपोस्ट बना था वर्मी कंपोस्ट कहो और संगवारी हो गीत गाना सुनबो संदेश गले हवे तो विषय को आना चाहबो सबसे पहले संगवारी हो देखा अभी समय ऐसे होगी से संगवारी हो कि खेती बाड़ी के जितकी भी बूता काम करा था हमन देखा था नया नया तकनीक मन आगे से है ना पहले कृषि यंत्र आत रहीस तो ट्रैक्टर वक्टर करके कृषि नाना प्रकार के बीज बर्था थरहा लगाए के देखत रहन लेकिन अभी समय ऐसे ये हो से ग्रोथ करी से मैंने काम बुतामा कृषि ले जुड़ी कृषि में बढ़ती ड्रोन की उपयोगिता संगवारी हो कृषि में ड्रोन है ना जो ड्रोन के तकनीकी है आप मैं समझते हैं ड्रोन कहले जो विवाह वगैरह में देखते रहिए ड्रोन ले कैमरा के द्वारा फोटो वोटो खींचते घलो लेकिन ड्रोन है सिर्फ फोटो वोटो नहीं खींचे भी एकर कई ठो अभी ऐसे तकनीकी द्वारा आगे से कई मॉडल आगे से जेकल खेती पाती के बूता घलो हो थे माँ जे मैं एक तकनीकी कहले एक क्रांतिकारी कह सकत हन बदलाव आगे से खेती बाड़ी में है ना ड्रोन ले जे वहाँ एक सटीक कृषि के रूप में जाने जाते इस ड्रोन की उपयोगिता हर सटीक कृषि के रूप में यह संगवारी हो यह पारंपरिक जो खेती के तरीका ला आधुनिक तेजी और अधिक कुशल बनाते कहा जेमा फसल के सुरक्षा पोषण और जो उत्पादन होते उनमें जबरदस्त वृद्धि होते कर ले संगवारी हो कृषि में बढ़ती ड्रोन की उपयोगिता के प्रमुख कारण कई ठो हावे जेमा एकर ले संगवारी हो कीटनाशक मन के और उर्वरक के सटीक छिड़काव हो सकत है ना दवा के बचत होते अगर ड्रोन के माध्यम ले छिड़काव करत हैं संगवारी मन तो जो जैसे हम पहले करत रहे परंपरा रूप ले तो ओकर तुलना में 90% तक पानी और 40% तक कीटनाशक या जो भी फफूंदनाशक वगैरह के बचत होते संगवारी हो माने इमें काम हर जल्दी होती है ड्रोन ले एकर अलावा संगवारी हो समान छिड़काव
यहर का करते, खेत में एक समान मात्रा में दवा छिड़काव होते जेकर ले फसल ला कीट ले बेहतर सुरक्षा हमन बचा सकथन, समय और श्रम की बचत होते घलो। संगवारी हो, एक मनखे हर या जो हम कृषि यंत्र द्वारा हम कई बूता धरे रहें, लेकिन ओला ड्रोन अगर मिनट में पूरा कर ले थे तो सोचो संगवारी हो, ये कितना सुघर ढंग ले हमन कृषि में कर सहायता ले सकथन। इमें मल्टी मन काम सेंसर, इमें मल्टी काम सेंसर जैसे कई चीज लगे रहते, जो कैमरा और सेंसर के फसल के स्वास्थ्य के विश्लेषण कर सकते, ये भी पता कर सकते चलते कि कौन हिस्सा में पानी या पोषण के कमी हावे। इहर ऐसे ड्रोन में ऐसे सेंसर भी लगे रहते जेकर ले पता चल जाते कि वो क्षेत्र विशेष में पानी की कमी है, पानी फसल में पानी की कमी है और संग में या कछु पोषण के कमी है, तो हर तुरते घले एक रिपोर्टिंग कर देते संगवारी हो, है ना। और समय में निदान घलो हो जाते, रोग या कीट के हमला के तुरंत हमला पता लग जाते कहा तो हमन मल्ला तुरते अगर निदान हुए कि हमन अगर उपचार कर लेथन संगवारी हो। मैंने ड्रोन की उपयोगिता हर ओकर उपयोग करे ले कतना फायदा हावे इ हम समझ सकथन। ओकर बाद संगवारी हो भूमि विश्लेषण, है ना, और योजना, इमें 3D मैपिंग होते जेकर ले ड्रोन खेत में 3D मैपिंग कर सकते, जेमा मिट्टी के स्थिति, जल निकासी और पोषक तत्व जो बात करत रहन के स्तर ला आकलन कर लेते, जेकर ले हमन ला ओकर निदान ओकर कौन ढंग ले हमन उपचार प्रबंधन कर सकथन हमन ड्रोन के माध्यम ले समझ सकथन संगवारी हो। और इमें बेहतर बुआई मिट्टी के विश्लेषण करके आधार हर एक नया पैटर्न आला अनुकूलित करते कह तो माने अभी के समय में। ओकर बाद संगवारी हो आपदा क्षति आकलन ड्रोन के माध्यम ले, बाढ़ सूखा ओलावृष्टि या भारी बारिश के फसल हर नुकसान लगले सटीक आकलन कर सकते। इमें ड्रोन हर जो है और बहुत मददगार करते संगवारी हो। दूसर में पशुधन और सिंचाई प्रबंधन,

भारत में ड्रोन के बढ़त उपयोग के कारण अब भी हवे सरकारी सहायता मिलती है एक बार किसान ड्रोन के उपयोग ला बढ़ावा दे बर सरकार सब्सिडी जैसे 50% या 5 लाख तक के जो अनुदान हवे ओला प्रदान करते संगवारी हो। दूसर में देखे किसे कि आत्मनिर्भरता है ना, ड्रोन महिला जो ड्रोन महिला किसान है ला भी सशक्त बनात है सरकार, जेमा ड्रोन दीदी जैसे ये मन हवे जो लाला अपना के आय बढ़ाते हैं ड्रोन दीदी मन है ना। तो ऐसे कई ठो फायदा हवे ड्रोन ले जो ला अपना के हम खेती बाड़ी के बूता कामला एक सुघर ढंग ले आधुनिक जो समय है आधुनिक समय के स्थिति परिस्थिति ला समझते हुए हमन मल्ला अपनाए के काम है। और ज़्यादा जानकारी पर अपन क्षेत्र विशेष के कृषि विस्तार अधिकारी मल्ल भी हमन संपर्क करके हमन ड्रोन के सुविधा के विषय में और ट्रेनिंग के विषय में प्रशिक्षण कैसे हो सकते कर विषय में जानकारी ले सकत हन। तो संगवारी हो जो कृषक प्रश्न मंच में यही प्रश्न ला जो चर्चा रही यही प्रश्न ला हम ले हन कि ड्रोन ले खेती के काम ला का कर सकत हन। संगवारी हो प्रश्न ला एक बार और सुनिया, ड्रोन ले खेती के काम ला का कर सकत हन। हमर पता हवे कृषक प्रश्न मंच कार्यक्रम किसान वाणी प्रभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 21 आकाशवाणी रायगढ़ पिन नंबर हवे 496001 इडाहरमा आप मन के सही उत्तर लिख के भेज सकत है संगवारी हो। अब संगवारी हो चर्चा में अगवाना चाहबो आज की नसीहत में आना चाहबो कि जो पंजीकृत दुकान ले ही खाद और बीज खरीदे के काम हावे। संगवारी हो हम जब भी बीज बर्था खरीदत हन है ना तो गुणवत्तापूर्ण खेती बर अत्यंत आवश्यक हवे कि हमला अच्छा ढंग ले बीज बर्था मिले, खाद भी अच्छा रहे असली रहे कहो नकली झर रहे आओ कीटनाशक जो केवल पंजीकृत लाइसेंस धारी जो लगत हैं दुकान ले ही खरीदे के काम हवे। एकल ले खरीदे ले का लाभ है संगवारी हो कि ओमें गुणवत्ता रहते गुणवत्ता के गारंटी रहते माने बीज बर्था उगे के है ना अंकुरण ले के ज़्यादा ओमें भरोसा रहते कहो। पंजीकृत विक्रेता के पास में जो प्रमाणिक और अच्छा गुणवत्ता वाला कृषि आदान उपलब्ध रहते है ना उसका सामग्री मन भी एक गुणवत्तापूर्ण रहते या प्रमाणिक रहते कहा। दूसर में वहाँ ले पक्का बिल हमन मल्ला मिलते है ना जेमा हमेशा विक्रेता ले पक्का बिल जरूर मांग के काम हवे। यह कोनो प्रकार के धोखा जो धोखाधड़ी या नकली बीज खाद भी स्थिति में सबूत के रूप में काम आ सकत है संगवारी हो। और पंजीकृत रही है ना दुकान हर तो जरूर पक्का बिल दी। दूसर में संगवारी हो एक लेवल की जांच भी केवल जो सील बंद पैकेट ही खरीदे के काम हवे जो नर हमन ला पंजीकृत जगह मिल सकत है। पैकेट में एक्सपायरी डेट भी देखबो है ना बैच नंबर देखबो आओ उत्पाद के जानकारी हमन अच्छा ढंग ले हमन ले सकत हन। एकर अलावा संगवारी हो अभी तो बहुत संगवारी जो किसान ये बीज बर्था बेचने वाला हैं ओमन फार्मर आईडी बनाते हैं गले कहो है ना ओमन जानकारी रखते हैं कि कौन कौन किसान हमारे संगवारी मन हमें और उनका ले हमारे करा का बिक्री खरीदी करत हैं कहो खरीदी करत हैं। और मान ल आप मन के क्षेत्र विशेष में कुछ पता चला थे अवैध बिक्री हो के शिकायत पर हम मल्ला जो बिना लाइसेंस धारी नकली या कछु बीज बर्था बेचत हैं तो हमन सूचना तुरंत अपन संबंधित जो क्षेत्र है वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी में कर सकत हन ओकर शिकायत ला या फोन के माध्यम ले भी शिकायत कर सकत हन जेकर टोल फ्री नंबर हवे 1800 1801551 मा है ना 1881 और 1551 में

ये टोल फ्री में आप मन फोन करके भी शिकायत कर सकत है। अब बात लगवाना चाहबो संगवारी हो कि कृषि अवशेष जो हावे है ना, कृषि अवशेष और कचरा लेहान मूल्यवान वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाबो कहके संगवारी हो, हम जो भी कृषि अवशेष के जैसे बंद कचरा हावे, पान पतई हावे है ना, वाला कृषि अवशेष कथन है ना, कृषि ले माल ला वाला उखाड़े हन, कृषि ले ही ये करे हन कहो, और ज़्यादा करके पान पतई वगैरह हावे कचरा हावे, तो इनमें वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद घर के बर भी हम बना सकत हन है ना, और जैसे घर के रसोई घले बना सकत हन, जेमा छोटे रूप ले जैसे बहुत संगवारी शौकिया तौर में रहते हैं तो हम ओकर जो साग सब्जी के डंठल है वही ला भी ओवन इकट्ठा करत जही तो भी हो सकत है। इमें जैसे कृषि अवशिष्ट में गोबर है, पत्ती है ना, और एक बहुत ही आसान और लाभदायक हमन मतलब प्रक्रिया हवे जो वर्मी कंपोस्ट बनाए के विधि बताना चाहिए। मान ला सौकिया तोले घर में करना चाहत हो है ना, बहुत छोटे रूप में करना चाहत हो, कंटेनर है या जो बेड तैयार करके हमन कर सका था ना। घर पर मान ला सौकिया तौर पर करना चाहत है छोटे रूप में, तो एक प्लास्टिक या टब या बाल्टी के टब में हम छोटे छोटे छेद कर सकत हन ताकि हवा आ सके और अतिरिक्त पानी बाहर निकल सकते। अगर खेत में हमन खेत भर जैसे बड़े रूप में करना चाहते हैं ना, शेड जैसे लगा सकत हन, तो ओकर बाद ओला हमन 10-12 फीट लंबा, 3-4 फीट चौड़ा और 1-2 फीट ऊंचा कच्चा या पक्का जो वेड रथे ओला बना सकत हन। एकर बस संगवारी हो, आप मन देखे भी हो या बहुत संगवारी मन जो ईंट के बनाए रथे कह है ना, ओमें 10-12 फीट लंबा रथे, 3-4 फीट चौड़ा रथे और 1-2 फीट ऊंचा रथे, ओला छैया में बनाया बरे है ना, छैया में बना ले जैसे रुक रही के छैया में बना ले, काय केंचुआ वाला चीज है संगवारी, केंचुआ वाला जीव है तो ओकर वह छैया बहुत जरूरी है। तो इमें आधार परत ला कंटेनर या हमन शेड में हमन नीचे में का करना है, 6 इंच तक सूखा पत्ती डाले के काम हवे, नीचे में घास भूस डाले बरे परत बिछाए बर हवे, भूसा के परत भी बिछा सकत हन। ओकर बाद कचरा डाले बर हवे, इमा रसोई के जैसे गीला कचरा है, फल या जो सब्जी के डंठल वगैरह थे ओला भी डाल सकत हन, पान पतई रहते ओला डाल सकत हन है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है कोनो प्रकार के नमक के चीज या ज़्यादा उनमें गौमूत्र वगैरह नहीं गिरना चाहिए, काबर केंचुआ वाला जीव हवे है ना। अई में गोबर ला कैसे डालना है, गोबर के कचरा के ऊपर में जो सड़े हुए गोबर जो 15-20 दिन के जो पुराना गोबर है ओला डाले के काम हवे है ना, सड़े हुए 15-20 दिन के बाद के गोबर ला डाले के काम हवे पान पतई और कचरा के ऊपर में। ओकर बाद केंचुआ के जो छोटे जो छोड़े बरूला हावे केंचुआला लगभग 40-50 प्रति जो वर्ग फुट हावे ओला ओकर पीस के हिसाब से 40-50 पीस ओकर ये है प्रति वर्ग फुट के हिसाब ओला डाले के काम हावे 40 या 50 ठो है ना। आई में बहुत जरूरी है ठंडा और नमी बनाए रखे बर, तो वेड ला पानी भी उमें डालते रहना चाहिए, हल्का नमी बना के रखना है। तेकरे बाद टाट जो लखन बोरी के जो सनिया बोरी वगैरह थे ढके के काम हवे, अब पानी ला ज़्यादा दे के काम न हो, वाला सिर्फ नमी बना के रखना है और वाला छैया में रखना है ना। तो हान मल्ला खाद तैयार हर लगभग 40-50 दिन के अंदर में हान मल्ला अच्छा ढंग ले एक वर्मी कंपोस्ट मिल सकत है संगवारी हो, तो इला आप मन जरूर वर्मी कंपोस्ट ला अपना हा और खेत डोली में जो हमारे मित्र जीव घले हवे कहा है ना, एक समय में कहा होत रहीस कि खेत डोली में ही हम मल्ला केंचुआ मिल जात रहीस, लेकिन अभी समय कहा हो कि से वो नंदाज जात है, ज़्यादा रासायनिक खाद होगी, ज़्यादा कीटनाशक मन होगी से तो हर नंदाज जात है संगवारी हो, तो इन चीज़ मल्ला आप मन ध्यान दे हो।

0: आओ संगवारी हो, इमें कई ठो चर्चा भी रथे कहा जेकर ला हमन सुनत सुनत हमन आपन संग गोठियात रथन कहो। ओकर बाद आप मन ला कहना चाहबो कि जब भी आप मन कछु प्रशिक्षण वगैरह की भी जानकारी रखना चाहत हो तो वर्मी कंपोस्ट बर कृषि विभाग ले अपन जो अपन क्षेत्र विशेष की एक नज़र में हमेशा रहा कि अपन क्षेत्र विशेष के कृषि विस्तार अधिकारी रथ हैं, हर एक ग्राम पंचायत में कृषि विस्तार अधिकारी रथ हैं, है ना। उमन के दौरा गांव में पड़ा रहते हैं, ओकर जरूर संपर्क बना के रखा है ना। एक तो सचिव मन अलग रथ हैं, कहा पंचायत सचिव अलग रथ हैं, लेकिन एक तो कृषि वाला रथ है कृषि विस्तार अधिकारी, तो ओकर आप मन के जानकारी में नॉलेज में हमेशा होना चाहिए। कई ठो स्कीम मन भी आते रहते, कई ठो योजना मन भी आते, उनके लिए संपर्क करके आप मन उनके लिए संपर्क करके ओकर लाभ ला ले सकत है संगवारी हो। तो गोठियाबो ओकर पहले हमन मन ला सुने बर हावे संगवारी हो, जो भेंट कर रथन हमन संगवारी मन संग ऐसा संगवारी हैं ग्राम पत्रा पाली पूर्व विकास खंड रायगढ़ के जो संगवारी हैं पशुपालक हैं कृष्णचंद निषाद, जो दुग्ध उत्पादन ले आत्मनिर्भरता के विषय में गोठियन है चर्चा रिस कहो कल जो भेंट कर रहे हैं तो वाला सुनबो तहां अपन गोट बादला फिर अघवाबो।
1: संगवारी हो आज के किसान के क्रम में हम भेंट करे हैं पशुपालक संगवारी ले, जो मन कौन हिसाब ले पशुपालन के बूता धरे हैं वो कल चर्चा करबो। ता संगवारी आप माला जय जोहार।
2: जय जोहार
1: संगवारी, आप मन के नाम और पता होता है?
2: कृष्ण चंद्र निषाद पत्रापाली
1: पूर्व कहो विकास खंड रायगढ़
2: रायगढ़।
1: तो ये पशुपालन के बूता ला आप मन कब ले धरे हैं संगवारी?
2: यार अभी 20-25 साल हो गए।
1: 20-25 साल हो गए। शुरुआती घर ले कर निजी पूंजी है। हाँ। आओ कितना ले शुरू कर रहे हैं गाय घर वाले?
2: माने एक खर खर हिस्सा।
1: हाँ। अच्छा तो अभी केठन
2: अभी अभी सब ला दे दी के माने चार पांच थी है, पांच थे
1: सब दुधारू है।
2: माने दुधारू दो थी, एक थी बच्चा गाभिन है। हाँ। और एक थी दो तीन थी बछवा है, छोटे दो थी दुहा है।
1: अच्छा लेकिन दुहा काम हर रनिंग है पूरा कहा?
2: हाँ, तो रनिंग है
1: ना। कबो न कब नी थिर के है?
2: नहीं नहीं नी थिर के अभी।
1: हाँ हाँ तो अभी कितना लीटर चलत है?
2: अभी चलत है
1: नौ दस निकल जाते। हाँ
2: हाँ
1: हाँ माने उतना लीटर निकल जाते रहो एक टाइम की दोनों टाइम?
2: नहीं एक टाइम दूसरा खाली।
1: हाँ हाँ
2: सुबह।
1: हाँ हाँ
2: शाम के नहीं दो।
1: हाँ हाँ और बेचे उचे के सुविधा ला छोड़े जाते हो कि ले आ जाते हैं गलो?
2: नहीं सब ले आते हैं, एक थी थोड़ी यहाँ छोड़े जाते हैं पास
1: छोड़े जाते हो। तो डेली के एवरेज कह ले यह कितना तक लीटर निकाले रहा आप मन के जीवन एक अनुभव चाहो कितना पहला निकाल दिया?
2: पहले तो 20 लीटर हो जाते रहेगा किन के रिस नहीं दुहा।
1: अच्छा
2: ये पूरा कोठा रिस की नहीं सो। हाँ हाँ हाँ अभी पूरा बंद कर दे नहीं सका थे।
1: हाँ हाँ तो आप मन इच में जुड़े हैं? हाँ
2: इच में है मोर हर
1: है ना। हाँ। आवी में पशुपालन के जी बुता दा धर था माने चराई वराई वाला बुता रहा
2: था? चराई वाला मैं चरा था दाना पानी वो थे।
1: हाँ हाँ दोनों जी है ना, दोनों जी मिल के कर थो। अच्छा संगवारी जो पशुपालन के बुता धरे है जो चराई लटी के है आप मन के? हाँ, बाहरी चराई जाते हो?
2: नहीं चराई जाते हो डेली।
1: चराई जाते हो?
2: हाँ डेली।
1: आओ घास भूस भी लाना पड़ते?
2: हाँ घास लाना पड़ते है सीजन में।
1: सीजन में लाना पड़ते है? नहीं तो आप मन के बंधाई वाला नहीं चराई वाला?
2: नहीं चराई वाला है।
1: तो आप मन के टाइम के लीच में बीता थे?
2: लीच में खाली मैं कुछ बुता नहीं कर जाए।
1: हाँ हाँ 20-25 साल लीच में हो?
2: लीच में खाली
1: है ना। तो लीच में आर्थिक स्थिति मजबूत है कहा तो जो भी बाहरी काम करना नहीं पड़ा थे?
2: नहीं पड़ा थे रस जान खाली करता हूँ बस।
1: हाँ हाँ अच्छा संगवारी मन फायदा है तब तो करा था नहीं अपन?
2: हाँ पेट पाट चलो थे।
1: और इमें नस्ल समझना चाहबो यह चराई वाला टीके है तो यह नस्ल अभी ज्यादा ये उन्नत नस्ल नहीं कहा जाए? नहीं
2: हाँ चराई ले चराई ले टीको थे।
1: हाँ हाँ हाँ तो बिहनिया के बजे ले उठ के बुताला धरतो?
2: बिहान से उठ के माने 6 बजे शुरू हो जाते गोरस वोरस दूध दुहा के सब छोड़ के अभी ढील हूँ आप।
1: हाँ हाँ हाँ
2: चाह पानी करके
1: ऐसे। हाँ हाँ और खातू गोबर भी बेचत रही?
2: हाँ खातू बेचो फिर
1: बेच दे तो।
2: हाँ गदा देता।
1: हाँ हाँ ओकर अलग मिल जाते का?
2: हाँ ओकर अलग मिल जाते जनरेट होते ट्रैक्टर।
1: हाँ हाँ
2: 17-18 आ जाते।
1: हाँ हाँ हाँ
2: और गोठान तो बंद हो गए ये वाला।
1: हाँ हाँ अच्छा संगवारी। हाँ हाँ हाँ तो संगवारी आप इमेज में फायदा हवे कहा तो?
2: हाँ चलो थे।
1: और संगवारी एक मनसे लगा चाहिए कि बिहने दो पैसा बने कहीं के है ना, तो यार घर ले लेहे भी आ जाते हैं कहते हुए तो बहुत बढ़िया बात हवे है ना। और इमें आगे चल के भी सोचे रखे है कि करना हवे इलाके के।
2: हाँ शुरू चलो मोर इच्छा बुता है कुछ बुता नहीं है।
1: हाँ हाँ
2: खेती किसानियों से थोड़ा
1: आप मतलब पूरा अनुभव हो।
2: हाँ मोर पूरा इच में धुन है बस और कुछ नहीं है
1: ना। अब ऐसे सोच रखा था कि आओ बढ़े कह के अब उम्र भी
2: देखना है ना ज्यादा
1: उम्र के भी पाबंदी रहती
2: है। आजकल तो कुछ चराए नहीं जाए।
1: समय भी परिवर्तन होगी तो कहो तो जिसे चरे वाला बात हवे तो इला अब घाम में ना थोड़े मुश्किल जात रही है ना।
2: हाँ अभी घाम में ना थोड़े देर चरा और लाल नूनी के तो हम बांध के कुटी बांध पूरा।
1: अच्छा घर में दे देते
2: हैं पैरा
1: कुटी वगैरह है ना
2: कुटी। हाँ
1: दाना भूसी जो भी
2: हाँ है, जो है खाते चरा दिन भर वो जो बुता है
1: इमें तो आप संगवारी मतलब क्या कहना चाहिए फायदा हवे यार।
2: हाँ फायदा तो है जो राखे सकी चरा सकी
1: तो पैसा बहने वाले बन जाए तो है ना और बाहरी काम करना नहीं पड़े कहा
2: नहीं पड़े नहीं पड़े।
1: तो कृष्ण चंदी अत किस प्रकार जानकारी देवते कर बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ।
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
0: तो संगवारी हो अभी भेंट कर रहे हमन ग्राम पत्रापाली पूर्व के जो पशुपालक हैं कृष्ण चंद निसाल ले दुग्ध उत्पादन ले आत्मनिर्भरता के विषय में रहीस। तो जरूर अपन जैसे कहा होते संगवारी हो अपन क्षेत्र विशेष में कहा है एक अनुकूल स्थिति रहते है ना पर्यावरण की स्थिति रहते बंद कचरा डारे की स्थिति रहते चराई वाला भी रहते तो इसे संगवारी मन भी मिलते हैं हान वाला जो मन आज भी ठेठ छत्तीस जो कहना चाहिए छत्तीसगढ़ में हमारे गाय गरवा में रहते हैं जो चराई ले जुड़े हैं तो आज भी ऐसे दूध उत्पादन करत हैं जो लगे कि साहब देखा जाए तो प्योर कहा जाए काबर जंगल जहाँ ले चर के आते हैं तो एक जहाँ तक हमारा समझ हो थे संगवारी हो वहाँ नाना प्रकार के पान पतई खा के आते हैं है ना। ओ वहाँ नाना प्रकार की जड़ी बूटी के पान पतई खा के आए रहते हैं तो उनकर दूध में एक प्रकार के सुगंध आते कहना चाहिए गोबर में एक प्रकार के अलग टाइप के सुगंध आते है ना। तो एक अनुभव तो है संगवारी ओकर गौमूत्र अलग रहते दूध में अलग गुणवत्ता अलग रहते तो ऐसे चीज़ मतलब नंदाना भी ठीक न हुए कुछ चीज़ आगे चल के जो हम पुरखा मान परम्परागत एक बनाए रहीन ओला भी अपनाते हुए हम मतलब चलना है संगवारी हो। तो संगवारी हो गोड बातला अघुआबो ओकर पहले संदेश घले सुने बर हवे ता फिर अपन गोड बातला अघुआबो।
3: किसान भाई मन का आप मन रासायनिक उर्वरक के खर्चा ला कम करना चाहता तो आज ही अपनावा हरी खाद ढेंचा सनई लोबिया जैसे फसल ला उगावा और फूल आए के पहली खेत मा जोत देवा। यह माटी ला भरपूर नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ देते जेकर ले बंजर जमीन मा उपजाऊपन बढ़ते कम लागत बेहतर पैदावार। अधिक जानकारी पर अपन लखठा के कृषि केंद्र ले संपर्क कराओ।
0: तो संगवारी हो अभी सुनत रहे संदेश और संदेश के पहले भेंटवार्ता हो गए कई ठो जानकारी हो गए और संगवारी मल्ला आप मल्ला अगोरा रथे लोकगीत मन की तो वाला सुनबो तहाँ फिर अपन गोड़वातला अगवाबो।

तो संगवारी हो अभी लोग गीत सुनात रहन ओला गा रहन उमा शंकर श्रीवास्तव और उनका साथी में रहन। तो गोटला विराम देवो आ संदेश गले सुने पर हवे तहाँ अपन गोट बातला अगवाबू।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: तो समरी तोरी संदेश संदेश में घलो कई ठुआमनो ला जानकारी मिलते कहो। अब चर्चा लगवाना चाहो शांतिपूर्ण ढंग ले साथ रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हवे ओला शांति का निर्माण होते संगरियो शांतिपूर्ण ढंग ले एक संग रहे बर हवे अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल हमन जो 16 मई के मनाथन कह एकर मुख्य उद्देश्य कहले हन मनला एक स्वीकार करना हवे कि दूसरा ला भी सुनना है समझना है और आपसी जो सम्मान के संग हम मनला मिलजुल के रहे बर हवे एकर मुख्य उद्देश्य हवे इला बढ़ावा देना है हमन मनला जो भी हन मनाथन अंतर्राष्ट्रीय शांति जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हवे है ना शांतिपूर्ण ढंग ले रहे बर जो आज हवे 16 मई एकर स्थापना संगवारी हो संयुक्त राष्ट्र महासभा इला हर जो कहना चाहिए दिसंबर 2017 में इला प्रस्ताव 72/130 लाए रहन एकर माध्यम ले दिन ला घोषित करे रहन कहो इन महत्ता कहले संगवारी हो शांति सहिष्णुता समावेशन और समझ और एकजुटता के महत्व ला उजागर करे के काम हवे और इनमें एक समुदाय विशेष में आपसी जो मतभेद हो जाते ओला नहीं हो के ला शांतिपूर्ण रहे के काम हवे विविधता में एकता ला बढ़ावा दे के एकर मुख्य उद्देश्य हवे संगवारी हो त संगवारी हो कछु भी दिन दिवस के एक प्रेरणा रथे ओला हमन मनला अपनाते हुए एक शांति भाव एक देश ले दूसरे देश एक मनखे ले दूसरे मनखे के प्रति हमन मनला रखते हुए हमन मनला जीवन यापन करे के काम हवे। त संगवारी हो ए तोरे चर्चा कहो और संदेश घले सुने बर हवे और एक ठो फिर तहां लोकगीत में आबो।
2: रामू भैया ए दारी ते धान के फसल बर यूरिया और डीएपी के जुगाड़ कर दारे हस का गा दाम हर तो आसमान छुआ थे भैया।
3: अरे अरे अरे नहीं भैया ये दारी मैं हर यूरिया के खर्चा ला आधा करे बर अपन के भुइया मा हरा खाद ला बोए हाँ।
2: हरियर खाद वो का होते भैया?
3: बस ढेचा और सनई ला उगाना है 40 और 50 दिन के भीतर मा माटी मा मिला देना है और फसल ला प्राकृतिक रूप ले पोषण आहार मिलते।
2: वाह ये तो संजूनी बूटी जैसे काम करी भैया महू भी अपनाऊ ये लगा।
3: हरी खाद ला अपनाव धरती दाई के स्वास्थ्य ला बचाव।
2: ज्यादा जानकारी बर अपन नजदीकी कृषि कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर में संपर्क कराऊं।

संवरी हो अभी सुनत रहे हैं लोकगीत। उला गा रही संगीता चौबे आओ गीत के प्रकार रहीस जो लोकगीत के प्रकार रहीस है विरह गीत रहीस। तो संगवारी हो गोट लगवाना चाहबो आओ दिवस कति फिर आना चाहबो आज हवे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। संगवारी हो प्रतिवर्ष 16 मई के इहर मनाया जाते जेमा 1960 में भौतिकी विज्ञानी थियोडोर मेमन हर लेजर के पहला सफल संचालन के जो वर्षगांठ के प्रतीक हावे संगवारी हो इला ओकर उपलक्ष्य मनाया जाते। एकर उद्देश्य संगवारी हो प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता बढ़ाना जो चिकित्सा है ना जो चिकित्सा क्षेत्र है संचार है और ऊर्जा के जो क्षेत्र मन है वाला जीवन में एक बेहतर स्थिति निर्मित करना हवे। यह संगवारी हो यूनेस्को द्वारा घोषित एक वैश्विक पहल हवे। संगवारी हो एकर महत्ता रे है ये दिलाते कि प्रकाश हमार दैनिक जीवन में एक अनिवार्य हिस्सा हवे जोन ज्ञान आशा और प्रगति के प्रतीक भी हवे कहा। असंगवारी हो ये दिन हर जो प्रौद्योगिकी के माध्यम ले शिक्षा समानता शांति के लक्ष्य लहावन जो हिसाब ले प्राप्त करना चाहत हन ओला जोर देना है एकर मुख्य उद्देश्य है संगवारी हो। आओ एकर जो कहन हरेक बच्छर इला 16 मई के मनाए जाते। अब प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकाश दिवस है ये दिन जो हम गोठिया रहे भौतिकी वैज्ञानिक जो इंजीनियर भी रहन कहा थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहला सफल संचालन की याद में इला मनाया जाते। तो संगवारी हो आप मन कछु भी दिन दिवस के याद करते हुए हम मन जो आवश्यकता है आज की स्थिति में है ना हर एक क्षेत्र में जो लेजर प्रकाश मन हवे विज्ञान में इतना तरक्की करे हवे है ना रोग बीमारी मन ले बचा था तो हन मन जो पुरखा ले हमारे वैज्ञानिक मन ले हन मन मिलीस है ना वही ले आज के पता चल पाते कि फलाना रोग व्याधि कैसे पकड़ ले थन है ना कि कौन क्षेत्र में कौन ढंग ले विकास होते ये पुरखा के जो वैज्ञानिक मन रहें ओला आगे चल के वो मन बना के गिन है तो वो कर याद रखना है। अब संगवारी हो कृषि कार्य के समय कृषकों का एक आर्थिक संबल प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के विषय में उठाना चाहो। संगवारी हो पीएम किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसान जोन हैं केंद्र सरकार की एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना हवे जोन है जो 12 सितंबर 2019 के यह शुरू करी गई रहीस। ये योजना के तहत 18 ले 40 वर्ष के आयु के जितके किसान हैं ओमन शामिल हो सकत हैं। अब 60 वर्ष के आयु पूरा होए ले प्रति माह मल्ला 3,000 रुपया और वार्षिक रूप ले मल्ला 36,000 रुपया के निश्चित पेंशन मिल ही संगवारी हो। योजना के मुख्य विशेषता है संगवारी हो कि पेंशन की राशि 60 वर्ष के आयु के बाद 3,000 रुपया प्रति माह के रूप में मिली और अंशदान हर 18 ले 40 वर्ष के हिसाब ले किसान ला आयु के अनुसार 55 ले लेके 200 प्रति माह के योगदान करना पड़ेगा। भी संगवारी हो इमें 18 ले 40 वर्ष इमें प्रवेश करे हवे किसान मल्ला और उनकर उम्र के हिसाब ले किस्ती बनी प्रति महीना 55 ले लेके 200 रुपया प्रति महीना के हिसाब ले अभी डारे बरे जमा करे बरे कह तो आओ ओ मल्ला 60 साल के ऊपर जब हो जाही तो मल्ला 3,000 मिलना शुरू हो जाही। पारिवारिक जो पेंशन है यदि किसान के मृत्यु हो जाते तो उनकर पति पति पत्नी है किसानिन तो बोला जो पति ला अगर पेंशन के 50% यानी 1,500 रुपया मिल ही का अगर मृत्यु हो जाते तो किसान के। पात्रता संगवारी हो 2 हेक्टेयर तक के खेती के योग्य भूमि वाला लघु और सीमांत किसान। आवेदन नज़दीकी जो CSC कॉमन जो सर्विस सेंटर के थनों में जाके अपन PM है ना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में जाके उमन रजिस्ट्रेशन कर सकत हैं। पोर्टल भी रहते कर कहो में भी जा सकत हैं और जरूरी जो दस्तावेज रहते संगवारी हो आधार कार्ड लागी बैंक के पासबुक लागी खाता विवरण लागी खेती के जो कागजात हवे है ना ओला उमें दर्शाना पड़ी।
संगवारी योजना हर वृद्धावस्था किसान मन ल एक आर्थिक रूप ले आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाए बर एक शुरू एक नया पहल हावे कहना चाहिए। तो जरूर आप मन किसान जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में जुड़ा आयकर लाभ ला जरूर लेवा। तो संगवारी हो फिर गोट बात ला घुआबो और लोकगीत ला भी सुने बर हावे ता फिर अपन गोट बात में आबू।

दरिया गाले संगमा जाबे तरिया जाबे वो गुल गुल भजिया खाली गुल गुल भजिया खाली गोरी तय धनिया डोली मोर संग तय हरदा दरिया गाले मन के गोरी मोर संग तय हरदा दरिया गाले संगमा।

0: भजिया खाले गुलगुलु भजिया खाले गुलगुलु भजिया खाले गोरी तय धनिया डोली मोर संग तय हरदा दरिया गाले मन के गोरी मोर संग तय हरदा दरिया गाले संग मा जाबे तरिया जाबे वो गुलगुलु भजिया खाले गुलगुलु भजिया खाले।
1: त संगवारी हो ए तो रहीस लोकगीत कह अवला गारिन शेख उशन जरूर आप मन लगलो अच्छा लगे रही कह हमार दाई दादा मन जाना थे कितना पुराना लोकगीत हवे। त संगवारी हो गोट बात ला अपन अगवाना चाहबो आर्थिक रूप ले जो कमजोर वर्ग बर धुआं रहित रसोई उज्ज्वला योजना के विषय में गोठियाना चाहबो। संगवारी हो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इला भारत सरकार द्वारा चलाए गए एक कल्याणकारी योजना हवे जेकर उद्देश्य ग्रामीण और गरीब परिवार के महिला ला मुफ्त LPG रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त प्रदान करना हवे। संगरी योजना के शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 1 मई 2016 के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शुरू करी गई रहीस। योजना के मुख्य उद्देश्य संगरी हो योजना के उद्देश्य में लकड़ी और जो उपला ले जो जैसन अशुद्ध ईंधन के इस्तेमाल ले ग्रामीण महिला मन के दह पहा स्वास्थ्य और जो नठात रिस्क है और एक पर्यावरण घलो नुकसान हो तो रिस्क हो तो उज्ज्वला योजना के माध्यम ले धुएं ले जो घर भर जात रहीस है ना लकड़ी मन ले या जो नहमन उपला ले जलान तो ले स्वच्छ खाना पकाना ईंधन के जो LPG है हमन ओला सरकार द्वारा प्रदान करत है और इमें संगवारियों मुख्य रूप से महिला मन के जैसे का होते देह पा में नठात रहीस धुआं ले ये होते रहीस बिगड़त रहीस देह का ओला भी बचाए के कर मुख्य उद्देश्य हो एक फायदा कहले संगवारी हो इमें मुफ्त कनेक्शन हवे यार कनो प्रकार के यार पैसा कौड़ी वाला बात न होए। योजना के तहत महिला ला बिना कोई जमा राशि के LPG गैस कनेक्शन दिए जाते मुफ्त सामग्री में संगवारी हो कनेक्शन के संग में पहला सिलेंडर जो रिफिल करतन और गैस चूल्हा भी मुफ्त उपलब्ध कराए जाते। तो संगवारियों बिना पैसा जमा के कनेक्शन में सिलेंडर दिया जाते है ना भरे सिलेंडर दिया जाते और चूल्हा भी मुफ्त दिया जाते और सब्सिडी के लिए सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के लाभार्थी मन ला प्रति जो घरेलू जो कनेक्शन है जो 14 किलो के आसपास रहते है ना सिलेंडर में सब्सिडी आर्थिक जो सहायता है मन के बैंक खाता में पहुँच जाते कहो। एकर बाद संगवारी हो जोन भी संगवारी मन जो एकर पात्रता के विषय में समझना हवे तो एक कनेक्शन बर परिवार के जो महिला वर्ष कौनो भी वर्ष के जो महिला हवे ओकर नाम जारी किए जही आवेदक परिवार में जो गरीबी रेखा ले नीचे संगवारी मन है उमल्ला मिली कहो। एकर अलावा संगवारी हो बीच बीच में नियम मन बदलत रहते कहो इला भी समझे के काम हवे जरूर संपर्क राखियो एकर आव का नियम आगे से कही के है ना अपन आसपास के डीलर मन ले और एजेंसी मन ले कई बार तो विज्ञापन भी निकारत रहते योजना मन के कहो ओले भी फायदा लिहो देख के। तो इमें संगवारी हो महिला के आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए घर के कन्हो भी सदस्य के पास में पहले ले कोई LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अब परिवार कहले संगवारी हो इमें का होते अब राशन कार्ड ला देखे जाते कहो परिवार में कौन कौन है के ठो महिला है ना के ठी लोग ले का हैं तो इस आपके समझ में आ जाते कि कौन महिला मुखिया हावे कहके इला हम समझ सकत हैं। आवेदन कैसे करे बर हावे पात्र महिला मल्ला योजना के लाभ बर नज़दीकी गैस एजेंसी जो वितरक रहते हैं के माध्यम ले या उज्ज्वला योजना के जो आधिकारिक वेबसाइट मान रहते हैं उनमें ऑनलाइन या ऑफलाइन हमन भी कर सकथन कहो। इमें बहुता का होती है कि अपन क्षेत्र विषय में जो वितरक हैं वो मन ले ज़्यादा संपर्क कर सकथन हम जाके उकर पास में और जो आवश्यक दस्तावेज रहते संगवारी में जो जरूरत पड़ते हमन मल्ला इमे आधार कार्ड लगी, पहचान प्रमाण पत्र वोटर आईडी, राशन कार्ड के जो परिवार की जानकारी उमे रहते, बैंक खाता लगी है ना, बैंक खाता जो पासबुक रहते, और पासपोर्ट साइज के दो ठो फोटो आवश्यक रूप ले लागते कहो। तो संगवारी हो, इला हमन मल्ला समझे के काम हवे कि सरकार का तिले नाना प्रकार की योजना मन चलत है, कौन ढंग लेकर फायदा लेबो, हमला जागरूक होना पड़ी है ना, महिला मन पर।

का योजना चलत है। अभी जैसे किसान मानधन के विषय में बताएं, किसान मन की योजना हवे संगवारी हो, है ना, रसोई बर रसोई गैस बर अलग योजना हवे, महिला मन बर हवे। तो ऐसे कई ठी योजना मन चलत है, जरूर एक लाभ लेवा। आ एक दूसरा ला अपन घर के आसपास के जो नज़दीकी है ना ग्राम पंचायत में घलो आप मन जानकारी बीच बीच में मिलत रहते, वहीं ले भी संपर्क जरूर रखा, है ना, कि हम मन ला कौन सी योजना में का मिलत है, जरूर आप मन चर्चा रखा। तो कन्हू झन हमारे जो पात्र मनखे हैं ओकल झन चुके भाई, है ना। अभी समय ऐसे हो कि से पर्यावरण की स्थिति ला देखा था, पर्यावरण है कि तार रूख डही कटई ले, गर्मी की स्थिति है का ये सब रूख डही कटई के कारण हवे संगवारी हो, है ना, ओला अभी हमने भोगना पड़त है। तो आगे चल के एक तो हमन ELPG वगैरह तो यूज करबो कह प्रयोग करबो, लेकिन पर्यावरण की स्थिति है संतुलन बने रहे, तेकरे पर अभी ठोको बतर भी चलत है कि आप पानी वर्षा कर ही संगवारी हो, है ना, बरसात के समय ही। तो खेती बाड़ी के संग में एक संकल्प जरूर रखूं कि रुख डही जरूर लगाबो, अभी ले गड्ढा तैयार करे के काम हावे, है ना, एक सोच रखा कि अपन जो टिकरा टार या जो भी डोली खेत हवे उसमें एक स्थान चुनाव कर लेवा, है ना, फसल झन नुकसान हो छैया ले इला ध्यान में रखते हुए, और पेड़ पौधा जरूर लगाए के काम हवे। ये मजाक वाला बात नहीं है संगवारी हो, अभी लगा देखा हमार कई पुरखा में लगाए रहीन, तो कर आज की स्थिति में हमने कर हमन संतुलन हवे कछु कहा, ओकर बाद हमन लगाए रहो तो आगे चल के पीढ़ियर भी पर्यावरण संतुलन में भागीदार बन ही कहा और फायदा ले ही कहा। तो ये चीज़ मन ला अभी ले तरक के ये कोई विज्ञान या कोई अलग से बात कहना चाहबो तो संगवारियों कि हमन अपन जो कहना चाहिए कि आगे की स्थिति ला कैसे निर्मित कर सकत हन, कुछ चीज़ हर अपन हाथ में हावे, ये समझे के काम है संगवारी हो। पेड़ पौधा लगाबो तो छैया मिल ही, है ना, फिर पानी वर्षा के में वैज्ञानिक सिद्धांत है, पेड़ पौधा जोन एरिया में ज़्यादा रहते पानी वर्षा भी बढ़िया होती कहो, जो धूल धक्कड़ है और कम माने जो गैस वैस बनते कहो, है ना, कार्बन डाई गैस मन छोड़ते हैं तो और अवशोषण कर लेते कहा, शुद्ध वायु छोड़ते। तो यार यार कहना चाहिए परम सत्य हवे कि हनुमल्ला प्राकृतिक रूप ले हनुमल्ला जोड़ना पड़ी, है ना। तो और मुख्य बात हवे कि पेड़ पौधा जरूर लगावा और अभी ले तैयारी रखवो। देखा का होते झड़ी उड़ी होते जन कहीं पानी वर्षा हो जाते तो गड्ढा उड्ढा हर का होते कि और नमी आ जाते और वो में शीतलीकरण हो जाते, ठंडा हो जाते धरती में, यह कहना चाहिए। और बरसात पानी में थोड़े का है आघोले गड्ढा ला तैयार रखबो तो हमन मला फायदा का होवे, तुरते वाला पानी वर्षा शुरू होगी तो जो भी बीज वर्षा के रूप डही वाला ऊपर में डारे बरे हवे, तेकरे वह संगवारी हो गड्ढा खोद लेवा, वकर माटी के उपचार कर लेवा अंदर के, है ना, जो भी कीड़ा मकड़ा लगते वकर कीटनाशक वगैरह पाउडर बनाते वाला छिड़काव कर दे रहा, सूखा गोबर खाद वगैरह में डाल दे रहा अच्छा से, है ना, गोबर खाद भी ऐसे कि वो में कीटनाशक वगैरह वगैरह जो पाउडर हवे ओला हन मिला के डाल सकत हन। आओ ओला एक अभी गड्ढा ला भर के रखे बर काम हवे, अब पानी गिरीस कि तुरते हमन मल्ला जो वृक्षारोपण वाला काम ला हमन मल्ला कर देना चाहिए। अब बात हवे अपन मेड़ में वाला बात नहीं, जहाँ भी मिली सामन ला सड़क वड़क मिली वहाँ भी अपन वृक्षारोपण कर सकत है। तो संगवारी हो समय समय चुक जाले बहुत ये बात हवे हो जाते, तो समय हर साल हमन मल्ला मौका दिए थे, हमन ला कर निरंतर करते जाना है। अब समय ही बरसात के वृक्षारोपण कर देवा, आने वाला समय अगर फायदा ली हर साल बरसात ही ऐसे करते करते हनुमान ला आगे बढ़ना है। तो संगवारी हो इसी ला मन ध्यान दिया, अपन देह पहा के भी गलो ध्यान में रखते हुए खेती बाड़ी के बुता काम ला धरिया, और फिर आने जब बैठकी में आबो, है ना, तो आओ कछु आने भी से लेके आबो आप मन की बैठकी में, तब तक अपन संगवारी ला बेड़ुधर पटेला किसानवाड़ी की बैठक के लिए विदा देवा। राम राम, जय जोहार।

किसान भाइयों ने अभी सुना कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

0: शंकर महादेवन की आवाज में अभी आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का गीत।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

इस गीत के साथ ही गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए अब सुने फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ऐतराज फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीत हिमेश रेशमिया का है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मेरा नाम प्रीति गुप्ता है, मैं रायगढ़ जिले से हूँ। मैं आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे होने की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा 90 वर्ष पूरा हुआ न करके। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं रेडियो प्रसारण को। जब हमारे पास छोटू सा मोबाइल हुआ करता था, उसमें बहुत से गाने हम लोग रेडियो के माध्यम से सुनते थे। सखी सहेली नामक एक प्रसारण भी होता था, जिसको हम बहुत अच्छे से सुनते थे। बहुत बहुत आपको दिल से शुभकामनाएं। थैंक यू।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

उदित नारायण और श्रेया घोषाल को अभी आप सुन रहे थे फिल्म गर्व में। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए हलचल फिल्म का गीत, उदित नारायण और सुजाता का गाया हुआ। गीतकार हैं समीर और संगीत विद्यासागर का है।

हलचल फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच

0: सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 6 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय

0: अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अदालत फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत था।

0: हम दोनों फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, जयदेव का संगीत था।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

Caitlin!

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का। लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल और आज के फनकार हैं इनके बेटे, जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

चल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विकी कौशल को फिल्मों का माहौल गुट्टी में मिला था।

विकी कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी है और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल, जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और इसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाए। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज गायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान। और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव ते चिकन खुराना, इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मनमर्जियां में।

0: साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।
1: जिद

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

0: विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।
1: कांधे पे सूरज

0: फैंटेसियां दिया।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
2: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम विविध संगीत। आइए सबसे पहले सुने कैफ भोपाली की लिखी गजल, आवाज है जगजीत सिंह की।

0: प्रतिशत छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

विविध संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज, गीतकार थे गुलशन बावरा। आइए अब सुने बसीर बद्र की रचना जगजीत सिंह के स्वर में।

ये गीत था लता मंगेशकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया हुआ। कार्यक्रम के अंत में आइए आप सुने जगजीत सिंह की आवाज में कृष्ण बिहारी नूर की यह रचना।

जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही विविध संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाते हैं पंडित निखिल बनर्जी का सितार पर बजाया राग रागेश्री।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित निखिल बनर्जी का सितार पर बजाया राग रागश्री। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: समाचार और समाचारों के बाद मैं रहूंगा एक बार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges